0: He should join us at Jantar Mantar.
1: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
0: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
1: Okay. What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday, which everybody is now talking about.
2: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहे। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांग की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई? सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली है। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे।
1: आपके मन में क्या है? What is on your mind today? The Prime Minister spoke today. He said fast track courts लगाएंगे इस पे. How would you react to that?
3: See, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद क्यों? Why after so many days they have did this? Otherwise, it should be on the go when the protest has been started. It should be at that time. So many people lost their life because of the need, and after so many days they are saying now we will talk about it. So I don't think they are saying they will talk about it, but when it's very late.
1: Okay. Are you a student?
4: Yes.
1: Okay. Why have you come here? What is on your mind today? Face yourself.
4: Actually, my purpose is I want to ask the our politics, our politicians, कि हमें ड्रॉप में क्या कहते हैं, हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं? इफ यू आर प्लेइंग लाइक दैट आवर फ्यूचर, सो व्हाई वी टेक ड्रॉप्स? व्हाई वी वेस्ट आवर इयर्स टू इयर्स बैक टू बैक? एंड इफ यू आर नॉट गिविंग दैट, तो सो रिजाइन कर दो, आप वहाँ से अपने पद से रिजाइन कर दो। और अगर आप रिजाइन नहीं कर सकते तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे तब तक, एट द एंड, जब तक आप यू शुड नॉट टर्मिनेट द पॉलिटिक्स और सिस्टम।
1: ओके, द कॉल हैज बिकम, कम हियर फॉर धर्मेंद्र प्रधान द एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर एक इमोटिव इशू बन गया है कि अनलेस ही रिजाइंस नथिंग कैन मूव फॉरवर्ड। You agree with that?
5: I absolutely agree with it. Even I have lost my very close friend 2 months ago for due to suicide.
1: You lost a friend?
5: He was my very close friend, and he did committed suicide due to his studies and educational kind of pressure. So I am very emotionally attached to this protest, and I am really going through it right now.
1: आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो डिमांड्स रखे गए हैं सामने अभी? आप भी एक स्टूडेंट है या स्टूडेंट थी, आपका क्या डिमांड है?
4: देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीज़ों को लेकर के लड़ सकता है, यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, तो वो उनको इस्तीफा देना होगा। वो इस्तीफा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो सारे लोग फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और एक दिन से नहीं, कई दिन से बैठे हुए हैं।
6: It's day 5 of the monsoon session, and the standoff between the government and the opposition over a debate on the students' protest still continues. Over the past 4 days, the opposition has been adamant. Despite the government's willingness to debate on the matter, it has said that no discussion can take place until their demand for the education minister's resignation is fulfilled. Meanwhile, last evening, opposition member parliaments arrived at the Gandhi Smriti from LOP Rahul Gandhi's residence after a brief standoff with the authorities outside his residence. The Congress invoked Mahatma Gandhi's idols during the visit and even reiterated that their demands on the students' protests. Meanwhile, the BJP has alleged that the opposition is insincere in their efforts and has even accused them of running away from a parliament debate as a delay tactic for political gains.
7: जो हमारे students हैं, वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे opposition MPs को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
2: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election,

0: महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं।
1: द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग व्हाट दे आर नोटोरियस फॉर, डिसरप्शन ऑफ हाउस, नो डिस्कशन इन द हाउस बिकॉज द ट्रूथ विल कम आउट एंड the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting, they don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
2: The government is ready for talks whenever you want, at whichever hour of the day, and for as much length of time that you wish to. We are ready to discuss the issue on which the agitation has happened and all the other related issues as well, with an open mind, and the talks can be held at the residence of Shri Nadda, because the talks will be led by the Health Minister of India, the senior leader Shri Naddaji, and of course I will be accompanying him. The talks could be held at Shri Naddaji's residence or at an office, whichever of the two you wish to, because you appreciate as much as I do that without talks, without dialogue, we cannot find a solution, and without a solution, we would not be able to lay down the further roadmap.
3: Well, as always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7 after this very short break. See you in a moment.

0: The same minister all those years ago protesting against paper leaks.
1: I think then he should join us at Jantar Mantar.
0: If Dharmendra Pradhan decides to come here, would you welcome him?
1: Of course, we would welcome him. We will also prepare his resignation letter. All he will need to do is sign it.
0: Okay. What do you think of the protest here? You raised the issue of reservation yesterday, which everybody is now talking about.
2: देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी माँ बाप के चार बच्चे हैं, अगर उसके दो बच्चे मर गए तो वो क्या चाहेगा कि मेरे दो बच्चे सुरक्षित रहें। हर आदमी किस बात पे बात कर रहा है कि 20 बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जो आज जिंदा बच गया उनके साथ न्याय की किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। जो जिंदा बच गया उसको भी तो न्याय दिलाओ ना। आप गवर्नमेंट के पास कितनी सीटें हैं कि हमने 10,000 सीटें बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट सीटें कितनी बढ़ाई? सिर्फ 2,000। आपने सिर्फ 5% गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज करी और आप कह रहे हैं मैंने 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। वो बाकी तो 10,000 सीटों पे 25 लाख पर ईयर फीस है। 25 लाख देने की मेरी औकात नहीं है, मैं 25 लाख कैसे दे पाऊंगा? आप कह रहे हैं कि 20 बच्चों के साथ न्याय करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, मुझे क्या फायदा होगा इससे? मेरा क्या होगा? मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? मेरी सीट जो जा रही है मुझे मिल जाएगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे दे, मोदी इस्तीफा दे दे, ट्रंप दे दे, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? मैं मर रहा हूँ, ये मर चुके हैं, उनको सिर्फ न्याय दिलाने की बात चली। जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे न्याय दिलाने के लिए बैठ जाएंगे धरने पे।
0: आपके मन में क्या है? What is on your mind today? The Prime Minister spoke today. He said fast track courts लगाएंगे इस पे. How would you react to that?
3: See, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद क्यों? Why after so many days they have did this? Otherwise, it should be on the go when the protest has been started. It should be at that time. So many people lost their life because of the need. And after so many days, they are saying, now we will talk about it. So I don't think they are saying they will talk about it, but when it's very late.
0: Okay.
3: Are
0: you a student?
4: Yes.
0: Okay. Why have you come here? What is on your mind today? Face is set.
4: Actually, my purpose is I want to ask the our politicians कि हमें drop में क्या कहते हैं, हमें drop लेना चाहिए कि नहीं? If you are playing like that our future, so why we take drops? Why we waste our years to years back to back? And if you are not giving that, तो so resign कर दो आप वहाँ से, अपने पद से resign कर दो। और अगर आप resign नहीं कर सकते तो हम ये protest जारी रखेंगे तब तक, at the end जब तक आप you should not terminate the politics or system.
0: Okay, the call has become, come here, for Dharmendra Pradhan the education minister ko lekar ek emotive issue ban gaya hai ki unless he resigns nothing can move forward. You agree with that?
5: I absolutely agree with it. Even I have lost my very close friend 2 months ago for due to suicide.
0: You lost a friend?
5: He was my very close friend, and he did committed suicide due to his studies and educational kind of pressure. So I am very emotionally attached to this protest, and I am really going through it right now.
0: आपको क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो demands रखे गए हैं सामने? अभी आप भी एक student है या student थी, आपका क्या demand है?
6: देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमारे सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान चीज़ों को लेकर के लड़ सकता है, यहाँ पे पूरे करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, तो वो उनको इस्तीफ़ा देना होगा। वो इस्तीफ़ा देंगे और उन्हें देना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो सारे लोग फ्रस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और एक दिन से नहीं, कई दिन से बैठे हुए हैं।
7: Meanwhile, 5 days into Parliament's monsoon session, one of the country's biggest political confrontations remains locked in stalemate. Despite repeated disruptions, competing claims of readiness for a discussion, the Lok Sabha has yet to hold a debate on the student protest that's substantive and the paper leak controversy. The opposition is making its position clear that they will not participate in a discussion unless Union Education Minister Dharmendra Pradhan steps down. The government, meanwhile, says it's prepared to debate the issue but has ruled out that precondition. And outside Parliament, as you can see through these visuals as well, the political messaging has intensified. Congress MPs led by Rahul Gandhi visited Gandhi Smriti after a brief standoff with the police. The Congress has been invoking Mahatma Gandhi's legacy to underline what they describe as a peaceful struggle for accountability. Meanwhile, the BJP is accusing the opposition of avoiding a debate it claims to have sought. Here are all the political reactions we've lined up for you. Listen in.
8: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी

0: चाहिए तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है।
1: Our leader Mahatma Gandhi was assassinated over here. Yes. Today the Modi government is assassinating democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students. And Mr. Narendra Modi has to remove.
2: How long you continue here?
1: He has to remove the education minister and he has to apologize.
3: आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे, जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं।
4: द कांग्रेस पार्टी इज डूइंग व्हाट दे आर नोटोरियस फॉर, डिसरप्शन ऑफ हाउस, नो डिस्कशन इन द हाउस बिकॉज द ट्रूथ विल कम आउट एंड द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट विल ऑल हैव टू कम आउट इन द डिस्कशन, सो दे हैव नो कॉज फॉर फर्दर एजिटेशन, दे डोंट वॉन्ट दैट। And therefore, they are disrupting. They don't want a fair discussion because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country.
5: The government is ready for talks whenever you want, at whichever hour of the day, and for as much length of time that you wish to. We are ready to discuss the issue on which the agitation has happened and all the other related issues as well, with an open mind, and the talks can be held at the residence of Shri Nadda, because the talks will be led by the Health Minister of India and the senior leader Shri Nadda ji, and of course I will be accompanying him. The talks could be held at Shri Nadda ji's residence or at an office, whichever of the two you wish to, because you appreciate as much as I do that without talks, without dialogue, we cannot find a solution. And without a solution, we would not be able to lay down the further roadmap.
6: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी है ऐसे कारनामों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके।
7: ये हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये जो भी युवा, इन भारत के युवाओं का डिमांड्स और उनका प्रेशर, वो हम सरकार तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, वो विपक्ष के रूप में हम सिर्फ वही कर सकते हैं।
8: लेकिन लगातार सरकार कह रही है कि आप लोगों की पहली मांग थी कि चर्चा होनी चाहिए, अब आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
9: देखिए, भागने की बात नहीं है भाई, देश का युवा जो है वो जब इस्तीफे की मांग कर रहा है तो हम तो जनता की आवाज उठाएंगे। जनता ने कहा है कि इस्तीफा होना चाहिए तो हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, बिना इस्तीफे की चर्चा नहीं करेंगे।
10: तीन डिमांड है, राहुल जी ने उसको बार बार दोहराया है। हम लोग छात्रों का जो भविष्य अंधकारमय हो गया है इस सरकार में, 157 लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, वो तुरंत बंद किया जाना चाहिए। नए सिरे से एग्जाम के पद्धति को बदला जाए ताकि लोगों का भविष्य बचा रहे।
2: अब ये किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में नहीं है, ये समाज के नियंत्रण में है। कोई भी आंदोलन जब नैसर्गिक हो जाता है ना, तो आप ए से निगोशिएट कर लें, बी से कर लें, फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधे टेबल पे आकर के छात्रों युवाओं की बात सुननी होगी, पहले टेंजिबल एक्शन लेना होगा, फिर बातचीत खोलिए एक व्यापक पैराडाइम प्रतिमान के लिए।
11: Meanwhile, the Federation of All India Medical Associations, along with the United Doctors Front, has moved the Supreme Court over irregularities in the NEET exam. The petition seeks sweeping reforms to the current NEET exam system. It also questions the NTA's functioning and demands the dissolution of the exam conducting body. In fact, you must note that the petitioners have sought an independent, autonomous examination authority to replace the National Testing Agency. They have also demanded a fully computer-based NEET exam, along with greater transparency and accountability. And FIMA and the United Doctors Front have also cited the Supreme Court's past observations on NEET controversies and security concerns, seeking a more secure and robust examination system. On that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you. Do stay tuned.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
3: अरे मेरे राजा,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: This is certainly a very high-level meeting called by Home Minister Amit Shah, Dr. Jitendra Singh and J.P. Nadda, both the key ministers who are in charge for having talks with the CJP delegation, and also these two ministers who met Sonam Wangchuk. The strategy for the upcoming round two talks with the CJP delegation will be chalked out by these two ministers alongside with the Home Minister Amit Shah. Both the leaders who were present this morning in the Parliament have left for Home Minister Amit Shah's residence, and there will be a crucial meeting before 12:30 p.m. is what they have been told. The CJP delegation will arrive at the Constitution Club, where both the ministers will be there and will be talking on the strategy as to how the deadlock between the government and CJP must end as far as their demands are concerned. Altogether, it has been stated very clearly on the social media platforms by the CJP as well that they wanted resignation of the education minister. That's one of the prior demands of the CJP. The government had been taking various steps in looking forward to the to acknowledging these demands of the CJP as well. But certainly how things pan out in the next 1 hour, and what Home Minister gave direction to these two ministers before leaving to Constituent Club, where they will be meeting the CJP, and what comes out is something which will be very interesting to see.
1: Very interesting, Dr. Jitendra Singh meeting Amit Shah. And like my colleague Aishwarya Jain is reporting, a lot of announcements are also expected from inside the Parliament complex today. A cabinet meeting is all set to happen at 2 p.m. The Prime Minister is going to take forward his vision of putting in place fast-track courts to expedite cases of investigation against paper leak cases. Remember, there's a law that's already in place. The opposition has questioned this decision, saying that fast-track courts have not been able to deliver much. And what students want is actual prevention of crime and not really deterrence. It's interesting because today is Friday. Private member bills are expected to come up, but there's no meaningful work that's been done for straight day 5 of the monsoon session of the Parliament. There have only been disruptions and constant adjournments in both houses of the Parliament. Now, both houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, are expected to resume functions at noon, but there is very little hope that there could be actually any action that will be done. Remember that 1 p.m. is when that important cabinet meeting is going to take place. The Prime Minister is going to be chairing that meeting along with other cabinet colleagues. Yesterday, he put out a video in which he promised action and stringent action against those found indulging in paper leak cases. Let's also listen in to what the Prime Minister actually said. Remember, this Prime Minister put out a video in the dead of the night. The format of the video was specifically important, interesting. It was not shot by anybody else. It was a selfie video, very much like the reels that youngsters take. In some ways, it was also to reach out to the younger generation. Many of the youngsters are participating in protests that have been organized across the country. Today is CJP's nationwide peace march. The Prime Minister, in an attempt to talk directly to students, has also assured them that his government is completely committed to their welfare. And he said a lot of things about the new bill that's expected to come up in the Parliament. Let's listen in to what he said.
2: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको, रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
4: कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है ये कल ही साबित हो गया। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री जी?
5: कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं चल रहे हैं उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिसे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
6: देखिए सोनम जी भी देशभक्त हैं, उनकी राजनीति अलग ही अलग विषय है, लेकिन उन्होंने भी समझा कि देश में भड़कावे की जो भावना कई ऐसी तत्व कर रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने अपना भूख हड़ताल उन्होंने समाप्त कर दी है। कल रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा सारगर्भी वक्तव्य आया, उसके माध्यम से भी हमने एक संदेश दिया देश को कि हम लोग त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक माहौल बन रहा था, एक नकारात्मक माहौल बन रहा था, उसके विरोध में अब सकारात्मक माहौल दिखता है।
7: खड़गे ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो प्रधानमंत्री को सदन में आके बात करनी चाहिए, वीडियो का संदेश नहीं देना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें फिर उसके बाद बात आगे बढ़े।
6: नहीं, ये अटपटी बात कह रहे हैं। कल पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, करीब 400 सांसद बैठे रहे कि कांग्रेस वहां पर आएगी चर्चा करेगी। आप बोल रहे हैं सदन में बात रखनी चाहिए, जब सदन में आप बात रखने देंगे ना? हम सभी ने बोला है कि आप लोग इस पे वार्तालाप करें, नीट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सब लोग करें। खड़गे जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि ये सदन में आके बात करें।
8: लेकिन वो केजरीवाल चाहे अखिलेश यादव ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग परमुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं।
9: इनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें, बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं साहब। अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है।
10: And Bellew, as you see there, as you heard there, the opposition still upping the ante in the national capital despite the Prime Minister's late evening assurances to the students. Well, with that, it's time we step into a short break. News and updates, they continue on the other hand. We'll be right back.

0: Centre steps up war on paper leaks, the education secretary replaced, and fast-track courts have been notified to ensure swift trials. As per sources, cabinet is likely to clear amendments to exam law with a tougher anti-cheating framework. CJP representatives say the Constitution Club has been selected as venue for next meeting with government representatives. That meeting is scheduled in half an hour from now. All eyes, Vedika, now are going to be in Parliament, because is the opposition now going to meet the government halfway? Talks are going to take place between the protesters and the government. Sonam Wangchuk broken his fast. Already in the morning, you've had one adjournment. Lok Sabha now reconvened. We hear Kiran Rijiju, Parliamentary Affairs Minister, standing. Listen.
1: बाकी जितना भी एमपीज हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं ये आश्वासन भी दिया हुआ है अभी एक बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आज पांचवा दिन है हम इसमें एक एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं आप कंडीशन मत डालिए हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी
2: मेरी बात सुन ले मैं दे रहा हूँ मेरी बात सुन ले मेरी बात सुनने मैं समय दे रहा हूँ मेरी बात सुनने राहुल जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया उन्होंने आग्रह किया है कि आज इस जिस नीट

0: की परीक्षा को लेकर के, उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही, तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा तैयार, चर्चा करने की बात है, तो मैं आप सब से, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट, मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूंगा, आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो, 13 लोग जेल में हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार, आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए, राहुल जी एक मिनट पेपर लेकर दें, फिर आप पूछिए। यू आर क्वाइट अवेयर द प्रोसीड्योर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, स्थगन सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है, तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए, हाँ बैठिए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी, और अभी पटल पर पेपर रख लिए जाए, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे, अब बैठ जाइए। अर्जुन आइटम नंबर 3 श्री प्रताप राव जाधव जी।
1: मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम से संयोग विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ।
0: आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी।
2: I rise to lay on the table of the house the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's
0: report. Item number 5, Sanjay Seth ji.
3: Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the house a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business.
0: Sabha ki baithkon mein se sadasyon ki anupasthiti संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट शोइंग एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन कंटेन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक

0: बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: They built, they led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards 26 July on the NDTV network?
9: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे
13: राजा।
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, Los Angeles. How?
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
9: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे
15: राजा।
16: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
17: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal, and Sandy Howard.
16: The show that sets the prime time agenda.
17: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
16: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
18: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.

0: Welcome back. At about 11:52 p.m. last night, Prime Minister Modi reached out to the people of the country. He has reached out directly to the students through a late-night selfie video and a post on social media calling paper leaks a serious issue. The Prime Minister assured students that those responsible are being dealt with firmly, saying several accused are already behind bars following action over the last 2.5 years.
1: And it had, remember, the entire evening, extremely fast-paced developments where you had the Prime Minister making this statement soon after Sonam Wangchuck broke fast in the presence of two union ministers. And in his message, the Prime Minister was absolutely clear that there will be zero tolerance for paper leaks in the future. And for that, not only have fast-track courts now been formed, but a far more stringent law is also going to be brought in.
2: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था. सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया. और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी

0: रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया, फास्टैग कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको, रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
2: कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है ये कल ही साबित हो गया। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई, आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री जी?
3: कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
4: देखिए, सोनम जी भी देशभक्त हैं, उनकी राजनीति अलग ही अलग विषय है, लेकिन उन्होंने भी समझा कि देश में भड़कावे की जो भावना कई ऐसी तत्व कर रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने अपना भूख हड़ताल उन्होंने समाप्त कर दी है। कल रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा सारगर्भी वक्तव्य आया, उसके माध्यम से भी हमने एक संदेश दिया देश को कि हम लोग त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक माहौल बन रहा था, एक नकारात्मक माहौल बन रहा था, उसके विरोध में अब सकारात्मक माहौल दिखता
5: है। खड़गे ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो प्रधानमंत्री को सदन में आके बात करनी चाहिए, वीडियो का संदेश नहीं देना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें फिर उसके बाद बात आगे बढ़े।
4: नहीं, ये अटपटी बात कह रहे हैं। कल पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, करीब 400 सांसद बैठे रहे कि कांग्रेस वहां पर आएगी, चर्चा करेगी। आप बोल रहे हैं सदन में बात रखनी चाहिए, जब सदन में आप बात रखने देंगे ना? हम सभी ने बोला है कि आप लोग इस पे वार्तालाप करें, नीट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सब लोग करें। खड़गे जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि ये सदन में आके बात करें।
6: लेकिन वो केजरीवाल चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है, और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं, मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं।
7: So the government at this point of time is working on 3 fronts. One, talking to the protesters, trying to engage with the protesters. Second, bring in a law. And third, an unsparing attack on the opposition. On that, they are absolutely clear that we are going to engage with the students, have a more gentle touch with them, say we empathize with you, but we are not going to brook any kind of politicization of the issue. The center, like we said, is preparing a major legal crackdown in its war on paper leaks, with sources telling NDTV that the cabinet is likely to clear amendments to the Public Examinations Act of 2024.
8: And the proposed changes include fast-track courts for paper leak cases, quicker trials, tougher jail terms, higher fines, and stronger action against organized exam mafias. The big question is, what about the network? The

0: लोगों ने स्टोन पेल्टिंग करी वाइल पुलिस इज सेइंग द ऑपोजिट. बट वन थिंग विच आई नोटेड वॉज कि पहले पुलिस वर्टिकली टीयर गैस मारी थी, लाइक ऊपर करके फिर ज़मीन, ताकि लोगों को लगे ना और गैस भी जाए. लेकिन फिर वो हॉरिजॉन्टली टीयर गैस मारने लगी, लाइक मतलब डायरेक्ट एम करके. तो लोगों के किसी के छाती पे लग रही थी, किसी के कहीं टीयर गैस लग रही थी, टीयर गैस के जो कैनन्स होते हैं वो लग रहे थे. एक के तो जस्ट आग के ऊपर लगा, जस्ट एक दो इंच ऊपर लगा आग के, पूरा ब्लड निकल रहा था उसके. एंड देन आई सॉ कि वो गन पैलेट भी मारने लग गए. एंड फॉर्चुनेटली मैंने एक पुलिस वाले को अपनी तरफ गन पैलेट पॉइंट करते हुए देख लिया, तभी मैं पीछे भागा और मेरे बैक में लगी, बैक और हैंड में लगी. वरना अगर मैं देखता नहीं तो वो मेरे फ्रंट पे कहीं लगती. सो दिस इज़ व्हाट आई सॉ.
1: I'm not sure whether it was an RAF personnel or a police officer because they were mixed, but and it happened so quickly. But what I remember is a gun being pointed in my direction. That's why I ran in the opposite direction when it all happened.
2: On that note, we slip into a short break. We'll be back.
3: Just a quick clarification though, the police hasn't defended its action. In a fact check, the Delhi police has said that we did not use any pellet gun. So pump action gun is the technical name for pellet guns. The Delhi police has come out with a statement saying we did not fire. However, the confusion now is, was it the RAF? Was it someone else? Clarity on that is needed, and hopefully that clarity should come. Did this
2: happen?
3: The
2: RAF comes under the CRPF.
3: Correct. So who was responsible for this? That clarity is needed. Time for a quick break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज़ अबाउट हाउ यू मूव।
10: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
11: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज़ अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
12: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
13: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
16: अरे मेरे राजा।
17: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
18: Hello and welcome to Watching Prime 5.
17: The show that sets the prime time agenda.
18: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
17: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
19: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
20: These are kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
21: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
22: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
23: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
24: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
25: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
26: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
19: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
27: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आकर मसाला।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
11: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
12: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
13: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
17: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
18: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
19: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
20: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
21: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
22: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
23: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
24: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
17: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
25: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: Cabinet approval, this amendment bill, well, it's expected to be introduced in Lok Sabha on Monday, as my colleague Aishwarya was just mentioning. In fact, let's just go back to Aishwarya. And Aishwarya, for the benefit of our viewers, if you could once again clear or tell us the differences between the existing law and, well, the new proposed law. What are the salient differences between these two laws?
1: Well, the earlier law that was passed back in 2024, that was Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024. Now, there are, as I was mentioning, there are amendments that the government has will be bringing up on Monday, and that has been approved by the cabinet as far as the changes in that particular bill is concerned. As I mentioned, there were different provisions in different cases involved into it. The maximum was, of course, 10 years of punishment and up to a penalty up to 1 crore rupees. That is drastically increased to 10 crore rupees as far as the monetary penalty is concerned. If anyone is found indulged in the paper leak cases, there are different provisions which will also be changed. One very important step that the government has taken, the Prime Minister also reiterating, that fast track courts will be implemented. The earlier bill that was in existence, that does not have any provisions of fast track courts, but now the most important one, the timeline has been set for at least 3 months, when the fast track courts head to head end their judgment, and the punishment will be given to anyone who is found guilty. So a major overhaul in the entire existing law, but very interesting to see, because the politics is also picking up on this.
0: Stay with us. Meanwhile, let us now take you across straight to the Constitution Club, where my colleague Ankit Tyagi is joining us from. Ankit, what's to be expected? How much do we need to wait for the statement to finally come in? And what are you picking up? How is this meeting compared to the first round of talks?
2: I don't think so that there has been much change as far as the basic body structure and the kind of positioning that both sides are coming from. Right. Before we go on, let me show you behind me. All this ruckus that you are seeing, Aditya, is the anticipation of the government ministers to come out, those who are engaged in the talks with the CJP. Both Ranka and Saurabh Das are expected to also come out from here. So all this anticipation, the cameras are absolutely on alert and itching to get that first frame, is for that post meeting consultation briefing that they are expecting. The cars...
3: नंबर टू, 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन जो फैमिलीज है, जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स ये
4: सिस्टम नीचे कर लो जी,
3: जैसे उन्होंने सुसाइड
4: कर लिया, इसको नीचे करो जी,
5: क्या कर रहा हूं
3: उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन।
5: अरे
3: एंड नंबर 3 एफआईआर फाइल हुए हमारे
6: और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी उस पे सरकार पॉजिटिव है।
4: और रिजाइन
6: साथ हमने एक और चीज रिजाइन से हम लोग बोल रहे साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ।
7: धक्का मत मारो, धक्का मत मारो।
3: सरकार ने विस्तृत चर्चा हुई है, हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या क्या करते उनके कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे।
4: आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए?
3: सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर सरकार ने फिर से समय मांगा है, कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनल स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा।
4: थैंक यू।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we're sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my

0: Modi, who has now reached out directly to students, and that is through a late night selfie video and a post on social media. Calling paper leaks a serious issue, the Prime Minister assured students that those responsible are being dealt with firmly, saying that several accused are already behind bars following action over the last 2.5 years. Prime Minister also announced that even stricter measures against paper leaks are on the way. The Prime Minister also said that a bill will be introduced in Parliament next week. Meanwhile, Rahul Gandhi has meanwhile slammed Prime Minister Modi over his message and said that students are demanding for resignation of the Education Minister and that the government should sack him.
1: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको, रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
3: कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है ये कल ही साबित हो गया। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई, आप, कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे।

0: इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री जी?
1: कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिसे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
2: देखिए, सोनम जी भी देशभक्त हैं, उनकी राजनीति अलग ही अलग विषय है, लेकिन उन्होंने भी समझा कि देश में भड़कावे की जो भावना कई ऐसी तत्व कर रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने अपना भूख हड़ताल उन्होंने समाप्त कर दी है। कल रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा सारगर्भी वक्तव्य आया, उसके माध्यम से भी हमने एक संदेश दिया देश को कि हम लोग त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक माहौल बन रहा था, एक नकारात्मक माहौल बन रहा था, उसके विरोध में अब सकारात्मक माहौल दिखता है।
3: खड़गे ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो प्रधानमंत्री को सदन में आके बात करनी चाहिए, वीडियो का संदेश नहीं देना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़े।
2: नहीं, ये अटपटी बात कह रहे हैं। कल पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, करीब 400 सांसद बैठे रहे कि कांग्रेस वहां पर आएगी, चर्चा करेगी। आप बोल रहे हैं सदन में बात रखनी चाहिए, जब सदन में आप बात रखने देंगे ना? हम सभी ने बोला है कि आप लोग इस पे वार्तालाप करें, नीट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सब लोग करें। खड़गे जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि ये सदन में आके बात करें।
4: लेकिन वो केजरीवाल चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है, और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं, मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं।
5: की बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं साहब। अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है।
6: टू लिटिल टू लेट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जब 25 दिन से आंदोलन चल रही है, पहले ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। और एक ऐसे शख्स को बचाने में पूरा आज भारत सरकार को इतना निंदा उठाना पड़ रहा है, और सवाल पे सवाल आज किए जा रहे हैं युवा की तरफ से कि भाई हुआ क्या, ये क्यों नहीं बताते हो, क्यों चर्चा पे नहीं बुलाते हो, परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी परीक्षा लीक पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? और सवाल सीधी तरह पूछा जा रहा है। इस आंदोलन का ना कोई लीडर है, ना कोई पार्टी इसके पीछे है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं।
7: Well, deadlock continues over the debate on NEET issue, which continues to disrupt the parliament. Both the houses witnessed noisy scenes as opposition MPs raised slogans asserting their demand for the Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation before any debate. The government has now maintained its willingness to hold a discussion, while the opposition remains firm that no debate can begin until the minister steps down. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju further slammed the opposition over uproar and not letting the parliament function at all. He said that government is ready for discussion on NEET. Opposition MPs also staged a protest inside the parliament complex, raising slogans, and I'm quoting, "Resign Pradhan," and accusing the government of avoiding accountability. Take a listen to all the reactions that are coming in on this.
4: मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए, और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी।
8: आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज
9: किया,
8: उससे मेरा मन दुखा।
10: एक तरफ विपक्ष है जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं।

0: हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले जल्द मिले वो करने।
1: But we'll continue to track paper leak politics and lots more, but right now slipping into a very short break. Come right back, lots more like that.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आजकल मसाला।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
11: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
12: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
13: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal on Saturday. How?
14: The show that sets the prime time agenda. Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
4: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
5: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
6: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
7: Be part of jury.
8: Welcome back. You're watching NETV 24/7 with me, Raisha Saigal. Let's tell you all that has happened in the last few hours. The government has now fast-tracked action in the ongoing NEET paper leak saga. There have been two major announcements which were made last night, and of course this comes within 24 hours of Prime Minister Modi's assurance. First, the centre cracked its whip on the Education Secretary. Vineet Joshi has now been replaced by Naresh Pal Gangwar in the

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: They built, they led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest takes center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards? 26 July on the NDTV Network.
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
10: This is India Inc.'s Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July on the NDTV Network.

0: our top focus right now. The Cabinet has approved the new paper leak amendment bill. Under the proposed legislation, those found guilty of leaking question papers or engaging in organized exam malpractice can face up to 10 years of imprisonment and a fine of up to rupees 10 crore. The law also provides legal backing for fast-track courts to hear such cases, with the government now aiming to ensure that the trial and the verdict are completed within a three-month period. This is, of course, a huge step forward by the government to eradicate paper leaks in India. The move is aimed at strengthening the integrity of public examinations and also deterring organized cheating networks. All right. This, of course, comes at a time when the government has made very many steps in eradicating paper leaks. And this comes before the Union Cabinet briefing, which will happen in just moments from now. But apart from that, there's also been the rejig of the Education Secretary. Prime Minister Modi also gave out a late night message urging students that the center is with the youth and that the government has taken various steps. We also had the round 2.0 talks between the CJP and JP Nadda and Dr. Jitendra Singh, where the centre has perhaps agreed on two demands. That's the withdrawal of the FIR and second, compensation for the families who lost their kids because of suicide and NEET paper leaks in last year. But the CJP adamant on Dharmendra Pradhan's resignation. Right now, what we're also witnessing is that the centre has made multiple. Ashwini Vaishnav is speaking right now, that key Union Cabinet briefing. Take a listen.
1: करने वाली बहुत important एक line है उसकी. क्या हुआ? Audio. नमस्कार मित्रों. आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है.
2: चेक कर लो ना.
1: इज इट ओके?
2: चेक करो. चेक.
1: ठीक है. नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है. इज इट ओके?
2: यहां से चेक. ये वाला ठीक है?
1: ठीक
2: नहीं हुआ है पूरा.
1: ठीक है. हेलो,
2: इस माइक से बोल लेते हैं.
1: जी सर, आप आइए.
2: कॉर्डलेस बंद कर ले.
1: ठीक है, आप बेटर है?
3: कॉर्डलेस बंद है.
1: बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए. सारे लोग
4: बस. ये ठीक है. यहाँ पे स्क्रीन भी. साथियों नमस्ते. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है. पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है. आज अप्रूव हुई है. और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना. मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ. पहला प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ. अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स. एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है. दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बिल्लारी टू होसपेट थर्ड एंड फोर्थ लाइन. आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है, यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है 52 माइल से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ। अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बिल्लारी टू होसपेट, 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है, यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन,

करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट, बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट काफी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है, बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं, यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है, दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकेंड नंबर पे है, स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे, चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर, पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1,000 किलोमीटर फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए, 1,000 किलोमीटर ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 ऑड पैरामीटर्स कंटिन्यूसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें, कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीजें मेजर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज, यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा। सो दैट्स वाई इट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज, 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी। सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं, भव्य रसायन स्कीम। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अ फाउंडेशनल इंडस्ट्री। फाउंडेशनल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है दैट फाउंडेशनल इंडस्ट्री सप्लाइज मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास देश में एक फाउंडेशन इंडस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस फाउंडेशन इंडस्ट्री पे यू कैन बिल्ड मेनी अदर इंडस्ट्रीज। केमिकल इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जिसमें इफ यू हैव दैट इंडस्ट्री इन योर कंट्री, देन यू कैन हैव मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड अपॉन केमिकल इंडस्ट्री। सो दैट्स वाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स, प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स, टाइम टेस्टेड
स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है।

0: और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाउ दी गैशियस एमिशंस विल बी ट्रीटेड, राइट, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नॉट जस्ट दी लिक्विड एमिशंस बट ऑल्सो दी अदर अदर गैशियस एमिशंस विच आर एमिटेड इन दी केमिकल इंडस्ट्री। देन सेफ्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्कर्स की सेफ्टी और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। दीज 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बेसिकली बी सेलेक्टेड थ्रू अ चैलेंज मोड। जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड, 1,000 करोड़ रुपीज तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। एंड सपोर्ट विल बेसिकली बी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आई सेड लाइक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, देन वेरी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेफ सेफ्टी रिलेटेड इंफ्रा, लेट्स से हेल्थ केयर में, लेट्स से फायर सेफ्टी से रिलेटेड, इन सब का बर्न सेफ्टी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्पेशल इसमें ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है और जो भारत का बहुत बड़ा विकसित भारत बनाने का जो बहुत बड़ा दैट बिग गोल दैट वी हैव टेकन फॉर अ कंट्री, उसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वेदर इट इज सेमी कंडक्टर्स, वेदर इट इज केमिकल्स, वेदर इट इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सारी चीज़ें तैयार हो रही है जो कि बेसिकली विकसित भारत बनाने के लिए देश को तैयार करती है। 5 ईयर्स रहेंगे टोटल फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल आउटले 3,000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सेलेक्शन होगा, मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है तो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना इजी रहता है। 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है। बहुत बेनिफिट्स होंगे और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल
1: मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, हु गेव अ ब्रीफिंग ऑन द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इन आत्मनिर्भर भारत. ही स्पोक अबाउट द रेल लाइन एंड ही स्पोक ऑन द बेनिफिट्स ऑफ दैट. ऑफ कोर्स दिस ब्रीफिंग कम्स एट अ टाइम व्हेन द पेपर लीक अमेंडमेंट बिल हैज बीन अप्रूव्ड एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी सम अनाउंसमेंट ऑन द एजुकेशन सिस्टम, बट ऑफ कोर्स दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू द पेपर लीक अमेंडमेंट बिल बिकॉज अंडर द न्यू लॉ there will be 10-year jail for paper leak accused, apart from that fines of rupees 1 crore as well. But what we just heard was the Union Minister Ashwini Vaishnav, who gave a lowdown on India's steps forward in Atmanirbhar Bharat, where he of course spoke about the rail line, he spoke about the Bhavya Rasayan scheme to establish chemical parks through plug and play role, and he also spoke about rail line to build economic corridor. He asserted that these are the two major issues which were discussed in the cabinet earlier today, but this briefing comes just after the cabinet has approved the paper leak amendment bill, which is a huge step forward by the center towards the students and to eradicate the neat paper leak issue here in India. Apart from that, there have been also various other announcements that the government has taken today. Round 2.2 talks were held between the CJP and the government representatives, where the government has said that we agree with the two demands. That's number one, the withdrawal of the FIR and number two, compensation to the families. But the CJP right now adamant on Dharmendra Pradhan's resignation. Apart from that, Prime Minister Modi also gave out a late night message saying that we are with the students and strict action will be taken. Because under the Paper Leak Amendment Bill, which has now been approved, there will be fast-track courts which will be formed. The notification already started yesterday, a 10-year jail period as well, and also fans. Let's take a listen to Prime Minister Modi's late night message yesterday. Take a look.
2: Friends, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है।
3: सर, हाँ, सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर, देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा, तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था
0: प्रधानमंत्री, कितने अटेम्प्ट होते हैं
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा था कैबिनेट में बिल लाया जाएगा।
4: सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज स्टेशन से। चूंकि कैबिनेट ब्रीफिंग पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई थी कि कोई अमेंडमेंट या फिर कड़े कानून बनाने के लिए कोई बड़ा फैसला जो है सरकार आज लेगी, तो जाहिर तौर पे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस संदर्भ में हुआ है तो आप आओगे।
5: MOS, PMO, so any kind, any update if you can share with us, like have was just discussed in the cabinet. Thank you. Next.
6: Anybody from the back, then right center, 76.
7: सर, अटेम्प्ट एक और जोड़ एक और ऐड कर लीजिए सर। कोई क्या कोई कैबिनेट में ऐसा कोई बिल आया था सर जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया?
6: ओ, एनीबडी फ्रॉम राइट साइड,
8: तो पूरा खुल जाता है।
6: आई एस 249
8: देख रहा हूँ, कोई आंसर इसमें लिखा हुआ
6: वृंदा। यस,
9: पेपर है इसके ऊपर।
6: Yes, Vrinda.
9: Sir, Vrinda from the print. Can you tell how many FIRs cases have been filed under the existing anti-cheating law of 2024, and if there are any arrests or convictions that have been?
8: चलो, मैं कैबिनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। केमिकल न्यू भी हो सकते हैं, ब्राउनफील्ड भी हो सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड में इसको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपने ये सही कहा कि इट हैज़ टू बी लोकेटेड एट इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, दैट्स द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि केमिकल पार्क्स प्रॉपर बने। इन्वेस्टमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। ये बेसिक इंफ्रा के लिए एक एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 crore, 20,000 crore, उस तरह का इन्वेस्टमेंट आराम से हो सकता है. एंड एरिया ऑफ अबाउट 8-10 square kilometers इज वेरी सिग्निफिकेंट. तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, लाखों करोड़ों में आएगा. दिस 1,000 crore फॉर्म्स द बेसिक इंफ्रा जो इसमें चाहिए, बट दिस विल बिकम द मल्टीप्लायर फॉर गेटिंग ऑल दैट इन्वेस्टमेंट. रेलवे का जो क्वेश्चन था, रेलवे में एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस बनाए, जिस थॉट प्रोसेस में पूरे देश में जितने मेजर प्रोड्यूसिंग प्लेसेस हैं और जितने मेजर कंज्यूमिंग पॉइंट्स हैं, जितने मेजर डिमांड ओरिजिन्स हैं और जितने मेजर डिमांड डेस्टिनेशंस हैं, राइट. फॉर एग्जांपल पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट्स से पुणे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, बेंगलुरु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड डेस्टिनेशन, राइट. एंड देर आर मेनी डिमांड ओरिजिन पॉइंट्स. वैसे ही कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के कई जगह दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड ओरिजिनेशंस, जहां से प्रोड्यूसर प्लेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल माइंस है, फॉर एग्जाम्पल कोल है, और बहुत सारे एरियाज है जहां पे फिर कंजम्पशन उसका होता है, राइट. तो इसका कंप्लीट मैपिंग करके ओवर पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 14 months वी हैव डन अ डिटेल्ड प्लानिंग विच विल बी गुड फॉर नेक्स्ट 20-30 years. एंड दिस प्लान इटसेल्फ इज वेरी डायनेमिक प्लान. अगर कोई कल नया प्लांट कोई अनाउंस करता है, राइट, तो उसके हिसाब से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो. ये सब सोच के एक लॉन्ग टर्म

0: of the education minister, and also the government should sack him.
1: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
2: कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है ये कल ही साबित हो गया। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई, आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है प्रधानमंत्री जी?
3: कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
4: देखिए, सोनम जी भी देशभक्त हैं, उनकी राजनीति अलग ही अलग विषय है, लेकिन उन्होंने भी समझा कि देश में भड़कावे की जो भावना कई ऐसी तत्व कर रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने अपना भूख हड़ताल उन्होंने समाप्त कर दी है। कल रात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा सारगर्भी वक्तव्य आया, उसके माध्यम से भी हमने एक संदेश दिया देश को कि हम लोग त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक माहौल बन रहा था, एक नकारात्मक माहौल बन रहा था, उसके विरोध में अब सकारात्मक माहौल दिखता है।
5: खड़गे ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो प्रधानमंत्री को सदन में आके बात करनी चाहिए, वीडियो का संदेश नहीं देना चाहिए, और वो यही कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़े।
4: नहीं, ये अटपटी बात कह रहे हैं। कल पूरे दिन हम लोग बैठे रहे, करीब 400 सांसद बैठे रहे कि कांग्रेस वहां पर आएगी, चर्चा करेगी। आप बोल रहे हैं सदन में बात रखनी चाहिए, जब सदन में आप बात रखने देंगे ना? हम सभी ने बोला है कि आप लोग इस पे वार्तालाप करें, नीट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सब लोग करें। खड़गे जी किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि ये सदन में आके बात करें।
6: लेकिन वो केजरीवाल चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है, और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं, मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं।
7: टू लिटिल टू लेट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जब 25 दिन से आंदोलन चल रही है, पहले ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। और एक ऐसे शख्स को बचाने में पूरा आज भारत सरकार को इतना निंदा उठाना पड़ रहा है, और सवाल पे सवाल आज किए जा रहे हैं युवा की तरफ से कि भाई हुआ क्या, ये क्यों नहीं बताते हो, क्यों चर्चा पे नहीं बुलाते हो, परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी परीक्षा लीक पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? और सवाल सीधी तरह पूछा जा रहा है, इस आंदोलन का ना कोई लीडर है, ना कोई पार्टी इसके पीछे है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं।
0: You know, let's tell you what's happening inside the parliament. Deadlock over the debate on NEET issue continues to disrupt parliament. Both houses witnessed noisy scenes as opposition MPs raised slogans asserting their demand for Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation before any debate in the parliament. The government has now maintained its willingness to hold a discussion, while the opposition remains firm that no debate can begin until the minister steps down. Union Minister Kiran Rijiju slammed the opposition over uproar and not letting parliament function. He said that government is ready for discussion on NEET. Opposition MPs also staged a protest inside the parliament complex, raising resign Pradhan slogans and accusing the government of avoiding accountability.
8: 5 din tak parliament mein

0: cannot arbitrarily declare who and who cannot attend which and what protest. We are right outside our Manthi, which has itself been a heart of several protest movements in the past. Now, as we talk about this, we also have to remember that while the university has issued the advisory, leader of opposition Rahul Gandhi has hit back, saying that the university cannot, quote-unquote, threaten students and staff with legal action. Congress MP Devendra Hooda has also said that as an alumnus of the Delhi University, he cannot believe that such a statement has been issued by the university.
1: All right, after 26 days of fasting, activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike following assurances from the government. Union ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh were present as Wangchuk broke his fast. Prime Minister Narendra Modi has now wished him good health and urged him to follow doctor's advice, while the centre has also announced a series of assurances, including no action against peaceful protesters and discussions to address key concerns as well. Even as Wangchuk ends his fast, student protests continue at Jantar Mantar. Sonam Wangchuk has now shared a message after breaking his fast, where he said that I have ended my fast with the hope for accountability.
2: Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks. ये हमारे साइड से।
3: नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि दो दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें दो दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर दो दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है।
2: स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026.
4: जो भी बच्चे और protesters 20th जुलाई को और अभी भी जो जंतर मंतर में protest कर रहे हैं उन पर कोई भी legal cases, FIRs, etc. दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो ये आश्वासन गवर्नमेंट ने कल सुबह दिया ओरली, लेकिन सोनम ने कल दिन भर फिर से फास्ट जारी रखा कि वो चाहते थे कि ये रिटर्न में हो। और फिर रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर FIR या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा, और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन।
5: देखिए, प्रधानमंत्री जब स्वयं आगे आकर के इतनी संवेदनशीलता का परिचय दिए, इतनी जवाब

0: I'm going to put my energies elsewhere.
1: That's disheartening, right? I mean, people, those who really have passion for something, giving it up midway, you must have given at least 4-5 years of your life to try and prepare for that. Is that the fire that you that has galvanized to, you towards this? There are a lot of other people, those who have been giving their years after years for preparation and not been, it's not been fruitful because of paper leak and other issues.
0: Yeah, thankfully with civil service, at least we know that there is not a paper leak on paper, but we don't know what's going inside because you see so many ministers' children being IAS officers. And if there is corruption everywhere, sometimes it also makes you doubt if it's not in the UPSC as well. But, you know, I think we are still carrying the English model of bureaucracy, which is like the IAS system is still that, right? It's not meant to serve the people. So it's like it needs a full overhaul. If other countries can have people who just do their public policy degrees and get into civil service, we should have that too.
1: Yeah, tell me one thing, because you've been following this, you are here today. So a lot of things happened last night. Prime Minister spoke to the young people. There was the education secretary reshuffle, and Sonam Wangchuk broke his fast as well. Do you think that is going to, in some way, have an impact on this? It will dim down, or do you feel that it is, you know, without the, with the demand of resignation, this fire is not going to ebb?
0: Firstly, I would like to thank Mr. Sonam Wangchuk. I think he did what he could, and we did really, we really respect that. But I think now, you know, if it's on their ego, now it's our ego as well. We have demanded what we have, and till the time they don't give it to us, we are not going to back down. And most importantly, I think they are counting on us that this is going to fizzle out. We just have to wait longer than they can.
1: You know, that's the resilience of the young that you keep talking about, that poets keep talking about. Sir, 1 second. And that, like that lady said, that you want us, you want to see how much patience we have to sit here. Well, we are in for a long haul. There is a steady stream of people, those who are coming here at Jantar Mantar. You will see, you know, three of these queues which are going through that very small entrance there. That is a security check where the volunteers are standing and letting people in. It is absolutely packed right now. You know, I have covered a lot of protests here at Jantar Mantar from 2011, Anna Hazare sitting here, to the Nirbhaya protest and others, and all these shops used to be here where people would come and eat, and still you would see so many people, in fact, still coming here to try and make their presence felt. People coming with their children and families. Aapka kya naam hai, ma'am?
2: Nisha.
1: Kahan se aaye ho?
2: Ranibagh se.
1: Ranibagh se. बच्चों को लेकर आए हो, छोटे से बच्चे को भी लेकर आए हो?
2: उनका ही तो फ्यूचर बचाना है, तभी तो आया है यहाँ पे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करने आया ताकि बच्चों को कुछ खाने के लिए बांट सके।
1: इतनी गर्मी में आपको डर नहीं लग रहा आपके छोटे बच्चे के लिए?
2: बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा, ये बताइए कि कल जैसे सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट अब खत्म कर दिया है, मोदी जी ने भी बोला है आके कि भाई अब आप लोग, मैं कर रहा हूँ, नया कानून भी लेके आ रहा हूँ, आपको लगता है उससे इसकी आंच धीमी हो जाएगी, या आपको अभी भी लगता है कि बिना इस्तीफे के काम नहीं चलेगा?
2: बिना इस्तीफे के तो कुछ नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, हम तब तक ही यहाँ डटे रहेंगे, धरना देते ही रहेंगे।
1: आते रहेंगे आप लोग? रूम
2: हम लोग आते रहेंगे,
3: वरना ऐसे तो जब जब नीट का पेपर होगा वो इस्तीफा नहीं देगा, तब तक वो लीक होगा, उसे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना।
2: नहीं भी आऊंगा ना तो मैं मेंटली यही होती हूँ, फिजिकली घर पे होती हूँ, मेंटली मैं यही होती हूँ।
1: सपोर्ट, चाहे नहीं भी आओ सपोर्ट पूरा है?
2: हाँ, सपोर्ट पूरा है।
1: ये मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, दिस गर्ल हैज कम विद दिस सेव माय फ्यूचर, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस विल बी द क्लैरियन कॉल दैट दे वुड बी यू नो स्पीकिंग अबाउट, एंड आई कैन कीप वॉकिंग, एंड फॉर सम रीजन यू विल स्टिल सी अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पीपल कमिंग इन। वेरी यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्ट एज वेल, दिस लेडीज हियर, हेलो, आप RIP करियर शादी .com, हियर आई कम, इसका क्या मतलब है मैम?
4: इसका मतलब ये है, एजुकेशन के पहाड़ में शादी कर लो आज में।
1: तो आप तो पूरा दुल्हन बन के आए हो यहाँ पे?
4: हाँ जी।
1: एक मिनट रुक जाइए सर, आप आराम से कर लीजिएगा, हम सबके पास टाइम है, आप दुल्हन बन के क्यों आए? हो यहाँ पे?
4: बोला तो शादी हो रही है अब मेरी, इसलिए आई हूँ।
1: पढ़ाई नहीं करनी?
4: पढ़ाई नहीं करनी, करियर तो गया बाढ़ में।
1: क्यों करियर गया बाढ़ में?
4: हम देख सकते करियर जा ही रहा है सब बच्चों का बाढ़ में, तो हमारा भी चले जाएगा, क्या जा रहा है।
1: क्या नाम है आपका?
4: दिव्या।
1: कहाँ से आए?
4: इंदिरापुरम।
1: इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से।
4: हाँ जी।
1: घर में पता है कि यहाँ प्रोटेस्ट करने

0: donors from across the country have been anonymously sending them medical supplies, which include, you know, tablets and injections and sanitary pads and so many other things. I caught up with the people, those who are, as they call it, doing the seva or the service for the protesters, those who are sitting here for the future of the young generation. कहाँ से आए हो आप प्रोटेस्ट करने?
1: फरीदाबाद
0: से. फरीदाबाद से पहली बार आए हो आज? That's the freak. They are just trying to check her glucose as well. And you will see here, there are volunteers, those who have, you know, sanitary pads, other things. It's all stocked to help the people, those who are coming here with the mask and the sanitizers, as I said, glucose and other important medicines like for fever and every other thing which is there. Kya hua? Kam aaya, zyada aaya?
2: 131 hai, normal hai.
0: Normal hai. ठीक हो ना? टेंशन तो नहीं हो रहा ना?
1: नहीं, अंदर नहीं आने दे रहा है, बहुत देर से
0: अंदर नहीं आने दे रहे आप लोगों को.
1: बहुत देर से खड़े हम, दो घंटे से बाहर खड़े हैं और हमें अंदर नहीं आने दे रहे.
0: आप लोग जो कितने पूरे दिन में, पूरे दिन ऐसे बिजी रहते हो, लोग आते रहते?
2: यस यस यस सर.
0: हाँ जी,
1: पाकिस्तान से आए हैं टेररिस्टों के लिए.
0: अच्छा अच्छा,
2: ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
0: मैं समझ गया, सरकाज़म में बोल रही
2: है. सरकार हमारे को आतंकवादी कहती है, इसीलिए वो इतना गुस्से से बोल रही है.
0: आप क्या कर रहे हो? आप डॉक्टर हो सर?
2: ये डॉक्टर है, डॉक्टर रियाज पठान, ये हेड है.
0: आप ये चला रहे हो पूरा सेटअप? मेरा नाम, क्यों आप क्यों आ गए यहाँ पे?
3: मेरा नाम डॉक्टर पठान है. मैं मुंबई के करीब में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी है, वहाँ पे रहता हूँ मैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और जब ये सीजेपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हो रहा है, आज़ादी के लड़ाई में तो हम शामिल होने पाए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था यार, इतनी बड़ा जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसे मेरा भी सहभाग होना चाहिए, इसलिए मैं आया था. तो ये प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बनने के लिए मैं आया था. मगर जब यहाँ पे आया,
0: आपकी प्रैक्टिस है वहाँ पे?
3: मेरा खुद का हॉस्पिटल, 10-bed हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है मेरा, खुद का हॉस्पिटल है मेरा.
0: छोड़ के यहाँ पे आए?
3: पॉलीक्लिनिक है, चलता है वो, वहाँ पे डॉक्टर्स है मेरे पास, और भी डॉक्टर्स है.
0: आप नहीं हो, नुकसान तो हो रहा होगा ना?
3: ऑब्वियसली नुकसान तो थोड़ा हो रहा है.
0: थैंक यू सो मच ऑक साहब, थैंक यू सो मच. सो यू नो, लॉट ऑफ पीपल हैव कम, एंड ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर सो मेनी ऑफ दीज पीपल, देयर आर गोइंग टू बी इश्यूज, एंड ऑल दीज डॉक्टर्स, यू नो, पीपल हैव कम, given their time to this so that the entire protest can carry on. There are anonymous donors, those who are sending them donations for medicines and other requirements at this very spot. While the protesters are here and a lot of people keep trickling in, I asked that question to Saurabh Das as well. A lot of people have been talking about now about the 3 documented cases of alleged pellet gun injuries to protesters. This happened on 20th of July when the protesters were marching towards the parliament. Their allegation is that RAF, the Rapid Action Force, opened fire with pellet guns, which are highly controversial, and 3 protesters were injured because of that. Now, a lot of proof is coming from that. I want to tell you, a medical case sheet from Safdarjung Hospital has documented actually a pellet gun injury sustained by a 28-year-old man who says he was injured at around 4 p.m. When the protest was on, as far as Jantar Mantar is concerned. According to the MLC, the man was brought to the hospital with complaints of pain after suffering pellet wounds to his right elbow and back. Doctors recorded that he was conscious, with blood pressure of 177 to 86 and oxygen saturation of 99%. The medical record is likely to add to the questions that are being raised as far as this kind of force being used against the young students. This is now become a big issue. NDTV has also tried to verify this issue, and we have in fact gone ahead and spoken to some of the victims as well. But before we play that out, let's first listen in how the opposition has now upped the ante on the government on the alleged use of the pellet gun. Today Rahul Gandhi spoke about it.
4: Sarkar ne kaha hai ki koi pellet gun use nahi hui, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है।
5: 19-year-old Sahil is among the three victims of the pellet gun, the alleged pellet gun shot that he had received. He's just 19. He's at this moment facing almost a life of disability with only 1% chance left for his eye. That was on his right eye. Sahil at this moment is in the Ames Trauma Center, where it is difficult to get to him because the authorities here are not letting anybody speak with Sahil. Usse baat karne abhi filhal nahi di ja rahi hai, lekin Sahil ke jo bhai hain, jo us din wahan par jab ghatna hui uske saath maujood the, kaise Sahil ko chot lagi aur kitne din ka unke ye pura sangharsh raha hai, wo baat karne ke liye mere saath abhi hain. Main sabse pehle aapse, aur main koshish kar raha hu ki un logo ka chehra aapko na dikhaun, kyunki सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं और इस वक्त पता नहीं है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरीके से हो रही है, लेकिन मैं उनसे आपकी बात जरूर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी साहिल का क्या हाल है, कैसा है साहिल अभी?
6: अभी तो वो फिलहाल क्या नाम है इसमें ही है, क्या नाम है, हॉस्पिटल में ही है, अंदर इसमें वार्ड में है ना भाई, वार्ड में ही है। उसका एक ऑपरेशन तो हो गया है आपका, एक रहता है, देन डॉक्टर बोल रहे थे क्या नाम है उसके कुछ ट्रीटमेंट और होने हैं, मतलब कि टेस्ट वगैरह कुछ और है, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या नाम है उसका दूसरा ऑपरेशन करना है नहीं करना है। अब वो जाने क्या कहेंगे और क्या नहीं बोलेंगे।
5: आप लोग मुझे थोड़ा घटना के बारे में बताएंगे, किस दिन ये हुआ, आप लोग साथ में थे उसके?
6: ये 20 तारीख को हुआ था, क्या नाम है, 20 जुलाई को, वो ये क्या नाम है कनॉट प्लेस के साइड ही हुआ। और क्या नाम है, हम उससे कितना 700 मीटर की दूरी पे थे।
7: वो फ्रंट में चल रहा था, मतलब भीड़ पीछे चली गई थी, तो वो फ्रंट में भीड़ को वापस लेकर आया, तो वो पुलिस वालों ने उसको लीडर समझ लिया, तो उसको टारगेट करते हुए पहले उसमें स्मोक ग्रेनेड उसको मारे गए हैं,
6: फिर उसके बाद उसके ऊपर पैलेट गन मारी,
7: उसके बाद उसको पैलेट गन मारी गई है।
0: We'll show you the detailed report as well, but you know, there is a lot of controversy as far as the pellet guns are concerned. What we are hearing is that the CRPF has initiated an internal inquiry to try and figure out who used this pellet gun, because the RAF, the Rapid Action Force, and let me show you the Rapid Action Force which is standing here. These are the personnel of the Rapid Action Force. They are the ones who usually carry the pellet guns, but what does the law say about it? AK Jain, former DGP Uttar Pradesh, is joining me at this moment. So thank you for speaking to NDTV. I first want to understand from you all these questions which are being raised. The Delhi police on record has gone and said, we have not used any pellet guns. What does the law say about the usage of the pellet guns? And what do you have to say about the usage of pellet guns on students, those who are protesting, sir?
8: Number one, it is part of law and order. It is part of the law and order arrangement which RAF makes. Pellet guns, they are armed with pellet guns for contingency operations. Number two, it's not considered a fatal weapon. And but if pellet hurts you at a very delicate place, for example, an eye, it can cause damage to the organ. But till now, there has been no fatality because of pellet gun. Pellet gun is part of the weaponry which RAF people carry during law and order duties.
0: Mr. Jain, but you also know, and I also know, sir, right from United Nations to other bodies have condemned and have also asked the governments all across the world to not use these pellet guns on unarmed protesters. What are the conditions in which it becomes necessary, and is there an alternative that is being spoken or thought about as far as our law and order machinery is concerned?
8: I don't know what were the circumstances which led to firing of pellet gun. Pellet gun is generally fired chili bombs, pellet guns, tear gas shells. These are all part of law and order control machinery. So I don't know why it was fired, by whom.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
14: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
15: This car makes no sense, yet it makes every sense.
16: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
17: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
18: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
19: वी बिल्ट, वी लेड, वी रीडिफाइंड द बिजनेस कॉन्वर्सेशन। नाउ इंडिया इंस फाइनेस्ट टेक सेंटर स्टेज। हु विल विन वी एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 26 जुलाई ऑन द एनडीटीवी नेटवर्क।
20: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
21: Really?
20: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: This is India Inc's Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July on the NDTV Network.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: P-Mark, the mustard specialist since
9: 1933. सरसों से सरसों।
10: Launch control 0 to 100.
11: This isn't just about.
12: Welcome back. Just before going into the break, we got you that story where the massive overhaul in the NTA is expecting, the government wanting to send a message that they are willing to fix the education and the examination system. Akhilesh joins me at this moment. Akhilesh, what is this overhaul that the government is talking about?
13: Well, the entire structure of the National Testing Agency will be changed. Remember, it conducts more than 15 to 20 national exams every year. But they have to make the system leak-proof. So now they are going to revise the entire system of outsourcing the work of the NTA. So far, only 26 permanent employees are working there. So government wants to enhance the staff strength. They have constituted an expert committee. And based on the recommendations of the committee, the NTA will be revamped completely. Ankit.
12: Akhilesh, thank you so much for joining us with all those details. Important steps they are being taken as well to try and fix the entire leakages in the system. But before I go, ladies and gentlemen, before we wrap up this show, I saw this gentleman with his lovely guitar sitting here. Sir, what is your name?
14: My name is Guitar Uncle Sushil Ahuja from Old Rajendranagar.
12: Guitar Uncle Sushil Ahuja ji. आप वहाँ थे अभी, मैंने देखा आप जंतर मंतर पे भी थे।
14: बिल्कुल, मैं सुबह आता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, फिर सुबह आता हूँ, फिर शाम को आता हूँ।
12: सर, जरा हमारे दर्शकों की तरफ शेयर कर लीजिए और जरा उन्हें बता दीजिए कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में आते हैं तो क्या सुनाते हैं।
14: खड़ा होकर करूंगा तो ज्यादा बेटर आएगा।
12: खड़ो के कर लेते हैं।

0: चाहिए क्यों भाई, जितना मर्जी जो है ये कैमोफ्लेजिंग करते रहे, गिरगिट की तरह जो है ना रंग बदलते रहे, मोदी जब तक नहीं हटेगा कुछ बदलाव नहीं हो सकता पूरे जो है इंडिया में भी।
1: सर आप बजा बहुत अच्छा रहे थे, बजा दे दीजिए
0: बिल्कुल। तो मोदी की भी तो बजानी है।

0: There's a lot of cartelization also involved when we talk about paper leaks. The dark side about paper leaks is not individuals, but certain organizations also that benefit from these leaks. And this is where the whole act will come into play at some point. You also have to look at the cartels who are running these cartels online, offline, physically, digitally, whatever. So I think that is where the law helps. But look at the irony of things, Vasudha. On Monday, when I was having that debate with you on Vijay Chowk, on what was supposed to be the first day of the parliament, we were talking about the NEET exam. We were talking about the fixes. By the end of this week, the fifth day of the week, we are just talking about Congress versus the BJP. It has boiled down to eventually a political issue.
1: That's the youth Congress protest. Yes, Tushar Gupta, just to show the visuals, we are on the Jantar Mantar Road, and these are protesters from the Youth Congress emerging from the Youth Congress office, and several others joining them. They're all on the way to Jantar Mantar. The crowds are expected to also swell up. Remember that the ministers are also in talks with CJP protesters. There is a solution expected in the next few days, but of course there's a sticking point of Dharmendra Pradhan's resignation, something that the CJP protesters are not willing to accept. Mr. Sharma, I've not come to you. Thank you so much for waiting. Help us understand, as you know, as somebody who understands education, do you think that the moves that the government is making right now is going to help the students? What is it that students want the most? How can the opposition and also the government sort of help them find solutions and not really, accentuate their problems?
2: I must say Kapil Sankla has stolen my words. I wanted to compliment Huma, who is so bright, who has actually given a very, very objective analysis of it. Look, when this all happened, we had all demanded that quick action must be taken and the agencies must be put in dock and people who are responsible must be fixed. Two people, I believe, like the Minister for Education and the DGMTA, don't forget, because it has been mentioned 47 people have been removed. I just hope and pray that DGMTA is not, action is taken.
1: Okay, Mr. Sharma, I'm sorry to interrupt you. We have an important piece of a breaking news. In fact, it's an interview with Chief Justice of India, Surya Kant. He has spoken exclusively to NDTV. This is based on his earlier remarks. Let's listen into what he said.
3: हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत है सर, एक बड़ी विवाद हुआ था जिस पर आपने आज बताया भी, और जो केस है जो पुलिस ब्रूटेलिटी की बात थी जिस पर बार बार मीडिया के एक्सेप्शन कह रहा था कि आपने सुने से मना कर दिया कि हमारे पास आज आपने क्लियर भी किया है और सोमवार के लिए लिस्ट भी किया है। तो जी
4: देखिए, मैं सिर्फ इस पर इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैटर ऑफ जुडिशियल साइड पर आएगा तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया।
3: जी जी,
4: सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार न तो कर सकती है न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने भारत वासियों को बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24/7 24 घंटे खुले हैं। मेरे पास अगर कोई पिटीशन आएगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा।
3: वो एकदम से मेंशन हुआ, आपको कुछ पता भी नहीं था।
4: उसको मैं ये बोलूंगा जिसको विस्तारवादी बोलते हैं, एक पेज का एक आप लेटर किसी को लिखे और उसको बोले कि इसी पे मेरा एविडेंस सुन लीजिए, इसी पे मेरी सुनवाई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है।
3: जी जी।
4: मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो रूल बने हैं किसी पिटीशन को फाइल करने के, उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता। तो मैंने यही मैसेज भेजना चाहा कि आप ये पिटीशन फाइल कीजिए तो हमसे कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं, आज सुबह 10 बजे तक मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे यहाँ पे कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, तब मैंने वो कोर्ट में मुझे मजबूरी बोलना पड़ा।
3: जी जी,
4: मैं आज कुछ पिटीशन फाइल हुई है उनका मेरे सामने मेंशन हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। जो कानून अपनी जगह है, जो भी उसमें प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे, और मैंने
3: तो आम लोगों को और खासतौर पर छात्रों को जिस तरह से यहाँ पर कहा गया उनको इनकी ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं?
4: मैं देश के हर नागरिक को और विशेष रूप से युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ कोई भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून की मर्यादाओं में रहकर के उनकी समस्या को, उनके दुख दर्द में उनको जरूर हम उसका कोई निदान करेंगे। उसमें जो कानून में संभव है वो हम उसको दिल्ली को प्रदान करेंगे।
3: इसी मामले में पॉलिटिकल इशू है, उस पर तो शायद आप नहीं पूछ पाते।
4: नहीं, मैं पॉलिटिकल इशू पर
3: हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत है सर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में हिंदू।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: We are over, जिमी।
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
8: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: ए युग तुम्हारा

0: रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
2: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
3: so many attacks,
2: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right, and Center.
2: Hard facts.
3: War struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
3: At Srinagar.
5: France.
3: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
8: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7। द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन, दिस विल बी वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद मल्टीपल चैलेंजर्स इन द फ्रे। द टीएमसी आल्सो हैज डन अ बिट ऑफ रीजिंग। Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
7: When stories have impact.
9: Padmasad Joshi, managing editor and primetime anchor.
7: Then news has influence. The buck stops here with Padmasad Joshi.
8: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
11: नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
12: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
12: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind you,
17: and we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
8: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmasad Joshi, and on every story that matters, the buck stops here. It's a truth universally acknowledged that a conflict benefits absolutely no one. And 5 days since the first violent clash took place in Delhi, leaving scores of protesters and policemen injured, the violent outbreaks unfortunately still continue and people are still left counting their losses. The police faces allegations in Delhi of using excessive force against protesters on the 20th of July. And Rahul Gandhi today brought a young man before the media who he alleges has suffered pellet gun injuries. Before this, the police, RAF, have also faced flak for videos that show them slapping women, lathi charging young boys and girls. The police, on the other hand, have been attacked even over the last 4 days. And on many occasions, those attacks have been completely unprovoked, leading to as many as 10 FIRs and 130 injuries. Close to 60 protesters as well have been injured in the July 20 clash. The question now is why? When things had already calmed down after the 20th of July, when the students were camping peacefully at Jantar Mantar, what then led to acts of violence and vandalism spilling over? for people to spill out of Jantar Mantar to take to the streets of central Delhi and attack the police and the RAF. Most importantly, who are these people? Because these cannot be students. There are hundreds of people with genuine demands, with genuine problems, with genuine grievances who are sitting peacefully at Jantar Mantar. Then who are these miscreants? Who are these people who are single-handedly ensuring that the tension keeps simmering and both sides, the protesters and the police, continue to suffer? The best answer to that actually can come from those who were at the spot, who were at the receiving end. Two of the policemen who were victims of this mob frenzy. And joining us now is Inspector N.K. Singh and Inspector Pradeep Rai. The thing is that most people think that the violence took place only on the 20th, when there was a clash between the police and the protesters. But even after that, there have been people, some antisocial elements who've taken to the streets. There have been regular clashes. Inspector N.K. Singh, in fact, was targeted close to Parliament Street Road on the 22nd of July, which is Wednesday. And Inspector Pradeep Rai was targeted on the 21st of July. Main aapse shuruaat karti hoon, Pradeep ji. Ye bataiye ki zyadatar to log ko laga tha ki jo bhi hinsa hui thi, 20 tarikh ko hi hui thi. 21 tarikh ko aapko chot kaise lagi? Pehle ye bataiye, aapko chot lagi kya hai?
4: मैम 21 तारीख को करीब शाम को 8:30 बजे हम लोग मैम कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई क्या लोग आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक
8: किस तरीके से अटैक किया आपको ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है
4: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं मैम उसमें पथराव भी हुए हैं बॉटल भी फेंकी गई हैं मैम कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट
8: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे जो वहां पर गाना गा रहे थे झंडा पकड़े हुए थे पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे क्या उम्र क्या होगी बैकग्राउंड क्या होगा कुछ बताएंगे
4: ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे बहुत से एलिमेंट्स थे मैम और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था पीएलबी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नॉट स्टूडेंट्स
8: एनके सिंह जी आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ अमूमन कितने बजे होगा आप क्या कर रहे थे झड़प शुरू कैसे हुई
5: मैम मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मैं चलने लगा चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था मोदी की पुलिस आगे मारो इसे मोदी की पुलिस आगे मारो इसे तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो आप ऐसा क्यों कर रहे हो आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए फिर मैं और चलने लगा फिर पीछे से लात मारने लगे गुस्से मारने लगे दे वर एग्रेसिव मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया मुझे नीचे गिराने की कोशिश की मैं थोड़ा भागा उनसे फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने घूसे मारे मेरी आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना आप देखेंगे काफी तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से। उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे उनके पास, कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
8: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे?
5: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर। ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
8: प्रदीप जी ये बताइए कि एक और चीज, क्योंकि जब 20 तारीख को हमने देखा तो देखिए वहां से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके, तो छात्र कह रहे हैं कि भाई हम भी भड़क गए, हमने रिटेलिएट किया, अब क्या हुआ वो तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। बट 21 और 22 तारीख को तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, तो हुआ क्या? मतलब क्या जिसको कहते हैं ना कि कैटलिस्ट क्या था, ट्रिगर क्या था जिससे अचानक से चीजें काबू के बाहर हो गई? मतलब कुछ हुआ क्या, कुछ बोला, कुछ लाठी चार्ज था, आंसू, क्या क्या हुआ, क्या गुस्सा किस बात का था?
4: कोई भी ऐसा जो हमारे ऊपर असॉल्ट हुआ है, जो हमारे साथ हुआ, उसका कोई बैकग्राउंड हो जिससे आपने कहा कि भाई आप किसी तरह का अल्टरकेशन हो, कोई बहस हो, वो कहीं और स्पेशली जाना चाह रहे हो, वो मार्च कुछ नहीं था। इट वॉज अ गैदरिंग, और उसके बाद में हमारे ग्रुप को देख के उन लोगों ने जान बूझ के हम अनसे एंगेज हुए हमारे साथ, और जो मुझे लगता है मैम कि वो एक ताकि भाई किसी तरह से यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाओ जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स भी हैं किसने क्या किया भीड़ में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार माहौल खराब करने के बाद जो फोर्सेस भी हैं और बाकी सभी लोग फिर दो ग्रुप बन जाते हैं। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग में ये हालात ऐसे चल रहे हैं कि ऐसा माहौल बना के कुछ लोग वहां पे ऐसे हैं जो कि ताकि बात जो है बढ़ जाए और वो स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में एक मुद्दा बन जाए, और ऐसे एलिमेंट्स जो है उनको अलग करना, उनको छांटना और उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैम ये जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, आम पब्लिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए बहुत डैमेजिंग। तो मेरा जो उस वक्त का एक्सपीरियंस जो कहता है मैम, कोई ऐसा प्रोवोकेशन की बात ही नहीं थी, एक होता कि वो कुछ चाह रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू जिस पे हम लोग अपना अपने अपने पक्ष को लेके हम लोग अड़े हुए हों या हम कुछ ना करने दे रहा। इट वॉज सिंपल गैदरिंग, 7:30 बजे की बात थी, हम लोग भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि कोई वहां से रिजेंटमेंट आएगा। ऑनेस्टली बताऊं आपको, इट वॉज जस्ट सिंपल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, और हम लोग वहां पर प्रेजेंट शो कर रहे थे ताकि बाकी चीजें वहां पे कोई इशू ना हो। तो ये कोई ट्रिगर पॉइंट हो या कोई ऐसा इशू हो मैम, ऐसा हमें कोई समझ नहीं आया, और मुझे ऐसा कुछ नॉलेज में नहीं है और ना ही उस दिन ऐसा कुछ था।
8: और एनके सिंह जी, कई बार ऐसा भी होता है क्या कुछ बच्चे आपके बीच बचाव में भी आए थे? क्योंकि 2-3 वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ बच्चे ही बीच में घुसे हुए, कह रहे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ये मत करो। फिर क्या हुआ, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश की?
4: बताइए। अगर आप देखेंगे हमेशा मैम जो है ना, जब भी कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ बच्चे या कुछ लोग आके उसको अलग में करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मना करते हैं कि आप ऐसा मत करिए।
8: आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ एनके सिंह जी?
5: मैम उस बीच उस भीड़ में मैम कुछ लड़के बोल रहे थे कि आप आगे चलिए चलिए चलिए भागिए भागिए, इस तरह से मुझे वो कह रहे थे कि भागिए यहाँ से कि मार देंगे भागिए। तो मुझे लगा कि फिर शायद वो लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते मैं, वो उसी का पार्ट है, उन्हीं के लोग हैं। क्योंकि उससे पहले मैम मेरे साथ ना, मैंने जो एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी, वॉलेट जो था मेरा, इसमें मेरा आई कार्ड था और एटीएम कार्ड से, वो वहां से उन्होंने स्नैच कर लिया। तो मुझे नहीं पता मैम किसने किया है, और ये स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है मैम, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते कि वो चेन स्नैचिंग है, पुलिस के साथ ही वो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं मैम। तो मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन स्टूडेंट जैसा व्यवहार करने वाला कोई है, या स्टूडेंट के नाम पर वहां पर उपद्रव करने के लिए वहां पर किसी को भेजा गया है, लाए गए हैं वो लोग। लगता है मोटिवेटेड है मैम वो लोग, कुछ करना चाहते थे दिल्ली में।
8: ये बताइए, क्योंकि अभी एक कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं और हो भी गया है नेचुरली, क्योंकि वायलेंस हुआ है, कि एक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट का माहौल बन गया है। आपने कहा कि आप एनके सिंह जी वहां पर खुद जंतर मंतर पर रहे हैं, बच्चों के साथ आप रहे भी हैं, आपने देखा भी है 2-3 दिन उनको वहां पर जो एक्चुअल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
5: मैम मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, वो अपनी बात रखें जंतर मंतर एरिया में। अगर वो आके बताना चाहते हैं किसी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो वहां पर आके बताएं, बात करें। लेकिन वहां पर जंतर मंतर एरिया के बाहर जो एरिया है, जो कनॉट प्लेस तक जाता है, वहां पर इतनी भीड़ में 5-5, 10-10 हजार लोग वहां पर चलने की रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। वहां पर वो लोग पता नहीं किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे अंधेरा होता है मैम, वो वहां पर कुछ ना कुछ वारदात करने के लिए हैं, रेडी है बिल्कुल ना। कोई भी वर्दी वाला मिल जाए, उनसे छीना झपटी करना, मारपीट करना, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ये होगा कि मॉब ने किया है, मॉब ने, मॉब का कोई कोई फेस नहीं होता, शक्ल नहीं होती। दूसरे कुछ इसमें प्रोपेगेंडा कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तो बस ये कलर लगा दिया है, इनको चोट ही नहीं लगी, झूठ बोल रहे हैं, या AI वीडियो होगा जिसमें भाग रहे हैं। तो मैम वो तो उसका तो कुछ होने है नहीं, लेकिन
8: वो आप ही का वीडियो है ना, जिसमें आप भाग रहे हैं और आपको अचानक से पकड़ लेती है भीड़, फिर आप छुड़ा के भागते हैं।
5: जी जी जी मैम, तो मैम मैं हूं, तभी मेरी MLC भी हुई है, इलाज चल रहा है, आप देखेंगे तो मैम यहाँ पर अभी चोटें लगी हुई है, सर में भी काफी स्टिचेज है, और पूरी बॉडी में जो है काफी ब्लोज है मैम, हाथ में चोट लगी है अगर देखेंगे आप, दूसरे में भी, मतलब पैरों में भी, मतलब उन्होंने ट्राई तो किया है बिल्कुल कि मार ही दिया जाए वैसे को ना। मतलब ये एक्चुअली मैम मुझे लगता है क्रिमिनल्स हैं वहां पर जो आ गए हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं मुझे लगता है अंदर हैं, जहां जंतर मंतर एरिया है, और जो उसके बाहर घूम रहे हैं सब क्रिमिनल्स हैं मैम। वो
8: आपके बच्चे हैं एनके सिंह जी?
5: जी मैम मेरे बच्चे हैं मैम, छोटे बच्चे हैं।
8: वो जब देखते हैं यहाँ पे तो उनका कुछ विचार है, क्योंकि आजकल तो सभी जेंजी बड़ी जागरूक है ना, सब टीवी देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, कुछ बताते हैं वो आपको ये सब देख करके? उनका क्या सोचना है ये जंतर मंतर के बारे
5: में? मैम पहले तो वो मेरी बेटी है 9th क्लास में, तो वो बहुत जागरूक थी, स्कूल में बात हो रही थी, वो कह रही थी नहीं तो CJP वाले है, वो अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात रख रहे हैं। लेकिन जब वो मेरी बेटी ने वो इंसिडेंट देखा मेरे साथ, तो मैं घर आया, इतनी सब बुरी हालत थी मेरी, तो मेरी बेटी रोने लगी, तो वो बोलने लगी मुझे तो इन लोगों से नफरत हो गई, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हुआ मैम।
8: और उस रात को जिस दिन आपके साथ वारदात हुई, उस दिन तो ACP जो हैं भगत, ACP भगत जी हैं, उनको भी उसी रात पीटा गया था ना?
5: हाँ मैम, वो मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मेरे से पहले ही उनका वारदात वहां हो रखी है, उसी रोड पर पहले उनकी वारदात वहां हो गई थी, और उनको काफी चोटें लगी मैम, उनके दांत टूटे हुए थे, ब्लीडिंग हो रही थी नाक से मुंह से, उनको इंटरनल ऑर्गन्स की कुछ इंजरी भी थी, बहुत उनकी हालत खराब थी। तो मैम वो उनकी गाड़ी में ही मुझे फिर लाया गया, उनके साथ में एक ACP और थे, उनको भी छोटी चोटें थी, एक दो और स्टाफ था, 4-5 लोग थे उस गाड़ी में। तो जैसे मैं वहां पहुंचा आगे जहां पर मुझे बचाया गया, उसके बाद उसी गाड़ी में मैं हम लोग RML हॉस्पिटल आके भर्ती हुए मैम।
8: प्रदीप जी आप क्या कहेंगे, अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है इस वक्त जंतर मंतर पे बैठा हुआ, वो तो देखेंगे, वो तो बहुत इंस्टा पे ये सारे वीडियोस देखते हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों को आप?
4: हम तो ये कहेंगे कि आप लोग देश का भविष्य हैं, और वायलेंस या गुस्सा या किसी किस्म की ऐसी जो चीज़ें हैं वो किसी के हित में नहीं है, और कानून जो है वो सबको मानना चाहिए, और किसी किस्म की इंस्टिगेशन में किसी की बातों में ना आए। यंग उम्र में थोड़ा होता है इन चीज़ों को लेके, कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, बट हर बात का सोल्यूशन सिर्फ बातचीत है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके बीच में गलत लोग हैं, आपको गलत गाइड करते हैं, आपकी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी सही बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे बच के रहें, और अपनी बात को एक जस्टिफाइड तरीके से डेमोक्रेसी में जिस तरह डिग्निफाइड वे में कहा जाता है उस तरह कहा जाए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे तत्वों के बीच में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। तो वायलेंस किसी बात का हल नहीं है, और इस तरह का बिहेवियर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ करना कतई जस्टिफाइड नहीं है। हम अगर किसी को कुछ भी रोक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट देयर टू डू आवर ड्यूटी, और उसको करना हमारी कंपल्शन है, हमारा एक दायित्व है।
8: एक चीज आपसे और पूछूंगी, क्योंकि कई बच्चे ये भी गुस्साए हैं क्योंकि जो वीडियो आते हैं ना कि भाई कोई पुलिस वाला थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है या किसी ने नेम बैच नहीं लगाया है, क्या है उसकी सच्चाई? उससे भी तो गुस्सा है इन बच्चों में।
4: लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट करते हुए किसने कब क्या एक्ट किया, किसी भी एक्ट को, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर कोई गलत एक्ट है तो उसको जस्टिफाई करना कहीं से ठीक नहीं है। बट ये गुस्सा होना भी कोई गलत बात नहीं है, कोई मिसकंडक्ट को नोट करना भी गलत बात नहीं है, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाए, अथॉरिटीज को बताया जाए, जो सुधार करने हैं वो कराए जाए, लेकिन वॉयलेंस या गुस्सा या तोड़फोड़ पब्लिक प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है, देश आपका अपना है, ये नुकसान करने से क्या हल मिलेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर कोई किसी भी किस्म की कोई गलती कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई भी संस्था का है, चाहे कोई भी है, तो उसके लिए हमारे पास फोरम्स हैं, अथॉरिटीज हैं, आप लोग उसको लीजिए। आप गुस्सा करके वॉयलेंस करके अपने खिलाफ केस कराएंगे या नुकसान होगा आपका, और अगर तरीके से ठीक से आप मैटर को टेकअप करेंगे तो आपके पास सुनी जाएगी, बिकॉज गुस्सा या वॉयलेंस जो है किसी बात का हल नहीं है, मेरा तो ये मानना।
8: बॉटम लाइन तो यही है कि देश का कानून है। जी एनके सिंह जी बताइए।
5: मैम मेरी बेटी है भव्या सिंह, मेरे साथ ही बैठी है, तो वो काफी रो रही थी उस दिन ना, मैं अगर आप मुझे इजाजत है तो
8: हाँ, बताइए ना भव्या, बताओ भव्या क्या कहना चाहोगी आप, फ्रेम में आ जाओ, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाओ भव्या। कौन सी क्लास में हो आप? 9th में?
18: 9th में हूं।
8: बोलो।
18: मुझे लगता है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उन्हें वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहिए था, एंड आई डोंट थिंक सो जहाँ पे वो जो लोग थे जिन्होंने मेरे पापा पे हमला करा, मुझे लगता कि वो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत नहीं करेगा अपने, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, ना कि ऐसे वायलेंस का रास्ता चूज करना चाहते थे, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे।
8: That's a very sensible thing. और मैंने सुना है कि you used to support the CJP. That you still, maybe you still support the CJP, right? I mean, who doesn't want to support reforms?
18: I support CJP. Those students जिनके साथ गलत हुआ, I support Sonam Angchur, but I don't support those people जिन्होंने ऐसी हरकत करी, like जो पुलिस को harm करना चाहते थे। बहुत लोग hate करते हैं पुलिस को कि वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन actually पुलिस बहुत help करती है लोगों की, और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता।
8: I think what this young lady has said is really the crux of this entire debate that we are having. Look, everyone wants reforms, everyone wants wrongs to be righted. Bhavya in particular. Hum log jo yahan baithe hue hain, in another 10-20 years we'll be history. These are the people who need to take the country forward. Violence is never the way. Everyone pays the price for it. Thank you very much. NK Singh ji aur Bhavya ko bhi aur Pradeep ji, thank you very much for speaking to us and hope you get well soon.
4: Thank you.
8: It is so terribly sad the kind of price that ordinary people, whether they are civilians, whether they're in uniform, have to pay for this violence. And then there is the flip side of the coin. In the July 20 clash during the march to parliament, official figures said that as many as 60 protesters were injured. Now NDTV has tracked down at least two of those injured who say that they have suffered pellet gun injuries. So were pellet guns used? And if yes, then by whom? Because the Delhi police has categorically said that no pellet gun usage has been done by them in all of these days. But the fact is that between these two victims, NDTV's Tanushka Datta has obtained the medico-legal report of a 28-year-old journalist, which clearly mentions pellet gun injuries. The word pellet is mentioned at least three times in this MLC. The report says that the victim sustained pellet wounds on his right elbow and back and was brought to Safdarjung Hospital with complaints of pain at injury sites. The case sheet then documents darkened skin around the wounds on his elbow and back with pellet shards stuck to his skin and tenderness on the impact site. All of this quoted verbatim from the report. Now, Rahul Gandhi has asked who will answer for this use of excessive force during a protest. Today, he brought the second victim, 19-year-old Sahil, before the media and demanded that action be taken against anyone who had used pellet guns on civilians. In fact, Tanushka also spoke to the uncle of Sahil before Rahul Gandhi brought him out in public.
19: क्या एक बारी शुरू से हमें समझा सकते हैं कि साहिल जी के साथ हुआ क्या उस दिन और आंखों की रोशनी के बारे में क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स?
20: 99% उसका विजन जा चुका है इसका और 1% चांस है बस।
19: 1% चांस है और उस दिन फिर हुआ क्या था फिर साहिल जी के साथ?
20: उस दिन वो प्रोटेस्ट में जा रखा था बीजेपी तो उधर वो गया तो मतलब भीड़ पीछे की तरफ जा रही थी पुलिस वाले लाठी चार्ज वगैरह कर रहे थे तो साहिल उनको लीडर बन के आगे की तरफ लेकर आया तो साहिल पे पहले उन्होंने एक लीडर समझ कर लीडर को एज अ टारगेट उसको किया पहले उसके ऊपर चार स्मोक ग्रेनेड फेंके गए हैं ठीक है और फिर उस पे पैलेट गन से उसके शॉट करे हैं उसको पैलेट गन शॉट किया फिर
19: कितने पैलेट गन्स के वुंड मार्क्स होंगे मतलब इंजरीज होंगे साहिल पर
20: 200 मतलब 200 मार्क हैं उसके शरीर पे
19: अच्छा और आंखों में आपने जो बोला जिस आंख की रोशनी जा सकती है उस आंख में डायरेक्टली पैलेट गन लगा है कि नीचे में लगा है
20: डायरेक्टली उसकी आंख में पैलेट गन लगा है
19: और साहिल ने ऐसा कुछ बोला क्या कि जो पुलिस थे वहां पर क्या पुलिस ने पैलेट गन्स डायरेक्टली फायर किया साहिल पर
20: हाँ जी
19: और अगला एक ऑपरेशन हो गया है अगला ऑपरेशन आप कब होगा
20: एक हफ्ते बाद
19: और साहिल क्या अभी बात कर पा रहे हैं या किस वो किस स्थिति में है
20: बहुत दर्द में है अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत उसका दर्द कम हुआ है मेडिसिन लेते तो दर्द कम हो जाता है मतलब थोड़ा बहुत बात कर रहा है बाकी तो ज्यादा टाइम सो ही रहा है
19: साहिल की उम्र क्या है वो उस दिन प्रोटेस्ट में क्या मन से गए थे
20: 19 साल का मेरा स्टूडेंट भी है डीयू का
19: और उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों ज्वाइन किया
20: स्टूडेंट तो अपनी भविष्य के लिए ज्वाइन किया था उसने फ्यूचर अच्छा हो
19: जी जी
8: An investigation must yield answers. Who used these pellet guns? How did these two people, at least these two people, sustain these injuries? And even as that investigation takes place, the other issue is, how does the government break the deadlock which still continues in Parliament? In the last 12 hours itself, the government has moved on multiple fronts. One, in bringing in a new tougher law to deal with paper leaks. Second, is the outreach efforts to the student protesters. And third, an administrative rejig as well. And then, of course, around all of this is the politics that is still playing out in Parliament. First, let's talk about the law. After the Prime Minister's zero tolerance message late last night, the Cabinet cleared a tougher anti-paper leak bill proposing up to 10 years in jail and fines of up to 10 crore rupees for those behind this organized leak racket. Second, is about the outreach. The government reached out yet again to Sonam Wangchuk late yesterday night. He ended his fast after receiving assurances on discussions taking place in Parliament, compensation for families of student suicide victims, and an assurance that no action would be taken against anyone who had participated in peaceful protests. Soon after that, Sonam Wangchuk said that now there is a need to engage. No one really benefits from a resignation. The need of the hour is to talk about reforms. Subsequently, the government met for the second time with members of the CJP. The CJP, though, after a meeting that lasted for almost an hour, said that we want to continue with our demand for the resignation of Dharmendra Pradhan. That is a non-negotiable. Now we'll have to see what the government's response is when the third round of talks are held tomorrow. And the third action that we spoke of, the administrative reset with changes in the higher education departments and the NTA. But will this three-pronged strategy be

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आ गया मसाला।

0: रैना तू सतरंगा
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV.
12: The Shiv Sena Shinde faction corporator seen assaulting a female doctor.
13: 11-year-old kid was unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
12: 18 maternal deaths at government hospitals across Rajasthan.
14: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
15: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
16: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
17: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
18: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
19: AIIMS Jodhpur also took do an investigation on it.
20: The college exists only on paper.
21: मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा।
22: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
23: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
24: अरे मेरे राजा,
25: सबका राजा आकर मसाला।
26: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
27: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
28: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
8: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
9: Kuch to baat hai is dil mein.

0: रैना तू सतरंगा
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा।
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
7: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
8: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद, तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
9: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: From the newsroom to the studio, to the thick of political action.
12: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
11: When stories have impact,
13: Bhagwatar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
11: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
12: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।

0: renatu sataranga jo ona hai wo to hona hi hai rangile tu sada muskura sada sada sada muskura rang rang rang rang rang rang rang ne re de kaise bhi ho din rang bana rahe
1: bojo paints rang bana rahe
2: we are over jimmy
3: hey लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
5: दिस इज इंडिया इंक्स रोल ऑफ ऑनर, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July, on the NDTV Network.
6: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
7: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो to the thick of political action.
2: Now watching NDTV 24/7, the hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
5: When stories have impact,
8: Padmasar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
5: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
9: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: मैं दिल्ली से ही हूँ सर। और आप यहाँ क्यों आए?
1: आई केम हियर बिकॉज मेरे दो बच्चे हैं सर। आई एम टू मच।
0: हाउ ओल्ड आर योर किड्स?
1: वन इज 6 ईयर ओल्ड एंड वन इज 2 ईयर ओल्ड। आई एम रियली लाइक थिंकिंग अबाउट इट कि अभी ऐसा हो रहा है, इन फ्यूचर कैसा होगा? अगर चेंजेस अभी होना शुरू हो जाएं, बट वी आर डिमांडिंग टू द स्टूडेंट्स, तो वी हैव टू स्टैंडिंग विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। जब चेंजेस हो जाएंगे तो वी विल बी टुगेदर। We are with the India, we are with the constitution, but things should be go with the polite way now.
0: Do you see this as a political movement or a students' right movement?
1: This is exactly students, sir. There's no any political movement, sir. We are all are together. There's only foundation of religion. There's no foundation of some kind of things.
0: What is your name, sir?
2: Santosh naam hua mera.
0: Aur Santosh, ye bataiye, aap yahan kyun aaye hain? Aapka matlab goal kya hai? क्योंकि आज दो मेन पॉइंट सरकार ने शायद एक्सेप्ट किया है कि कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए और कॉम्पनसेशन होना चाहिए, तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं?
2: देखिए, मैं तो चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो मोदी जी हैं उनको कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक होता था। 10 साल हुआ, 12 साल मोदी जी का, 22 साल के बाद मोदी जी को लगा कि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, हमको स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए, कैबिनेट मीटिंग बुलाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज देश का युवा का मतलब देश का भविष्य सड़कों पे है ना, और देश का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। मोदी जी के पास दो ऑप्शन था, एक देश के युवाओं की आवाज़ सुन लेते, देश के भविष्य को सुरक्षा देते, दूसरा विकल्प था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते। लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी वो तानाशाह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी मर्जी से इस्तीफा दे ही नहीं सकते हैं। और मैं युवाओं का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि ये देश हमारे जैसे लोग निराशा के गर्त में जा चुके थे, युवाओं ने एक रोशनी दिखाया, यही आंदोलन युवाओं का स्टार्ट किया हुआ है, शिक्षा के मुद्दे पे है, लेकिन आज ये आंदोलन पूरे देश का हो गया है।
0: ओके,
2: इसका कोई एक नेता नहीं है।
0: ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कम दिस वे, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ वॉइसेस ओवर देयर, लेट्स सी व्हाट्स टेकिंग प्लेस ओवर हियर। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ओवर हियर, and you've got all sorts of protesters on the ground over here, and let's just try and give an idea. And well, you get a lot of that as well, a lot of students who don't in fact want to say, many of them wearing masks, they say that they don't want to be identified, but that's their personal choice. But this is just one side of the protests that you can see. It's late in the evening, all of this is taking place here, and these crowds stretch all the way to the other side. So it's an important day, the protests are not over, if anything they appear to be gaining steam, and it's clearly now incumbent on some sort of solution to emerge for this to be over. The students are clear in terms of what they want. Will the government accept it? With Ashok Mahale and a team of NDTV correspondents, Vishnu Shom and Jantar Mantar for NDTV.

0: They led. They redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest takes center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July on the NDTV Network? From the newsroom to the studio to the thick of political action.
1: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
0: When stories have impact.
2: Padmasar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
0: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
1: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
0: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
5: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
6: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
7: Gender parity to be reflected. While we choose leadership as well.
8: It's also important that how they are reshaping the industries.
9: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
0: Who will earn India's top business honours? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
10: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
10: It's incredible.
0: He has seen history.
1: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. And on every story that matters, the buck stops here. It's a truth universally acknowledged that a conflict benefits absolutely no one. And 5 days since the first violent clash took place in Delhi, leaving scores of protesters and policemen injured, the violent outbreaks unfortunately still continue and people are still left counting their losses. The police faces allegations in Delhi of using excessive force against protesters on the 20th of July. And Rahul Gandhi today brought a young man before the media who he alleges has suffered pellet gun injuries. Before this, the police, RAF, have also faced flak for videos that show them slapping women, lathi charging young boys and girls. The police, on the other hand, have been attacked even over the last 4 days. And on many occasions, those attacks have been completely unprovoked, leading to as many as 10 FIRs and 130 injuries. Close to 60 protesters as well have been injured in the July 20 clash. The question now is why? When things had already calmed down after the 20th of July, when the students were camping peacefully at Jantar Mantar, what then led to acts of violence and vandalism spilling over? For people to spill out of Jantar Mantar, to take to the streets of central Delhi and attack the police and the RAF? Most importantly, who are these people? Because these cannot be students. There are hundreds of people with genuine demands, with genuine problems, with genuine grievances, who are sitting peacefully at Jantar Mantar. Then who are these miscreants? Who are these people who are single-handedly ensuring that the tension keeps simmering and both sides, the protesters and the police, continue to suffer? The best answer to that actually can come from those who were at the spot, who were at the receiving end. Two of the policemen who were victims of this mob frenzy. And joining us now is Inspector N.K. Singh and Inspector Pradeep Rai. The thing is that most people think that the violence took place only on the 20th, when there was a clash between the police and the protesters. But even after that, there have been people, some antisocial elements who've taken to the streets. There have been regular clashes. Inspector N.K. Singh, in fact, was targeted close to Parliament Street Road on the 22nd of July, which is Wednesday. And Inspector Pradeep Rai was targeted on the 21st of July. Main aapse shuruaat karti hoon, Pradeep ji. Ye bataiye ki zyadatar to log ko laga tha ki jo bhi hinsa hui thi, 20 tarikh ko hi hui thi. 21 tarikh ko aapko chot kaise lagi? Pehle ye bataiye, aapko chot lagi kya hai?
4: हम 21 तारीख को करीब शाम को 7:30 बजे हम लोग मैम टॉसर रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इसे आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया।
1: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
4: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
1: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है। और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
4: थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम। और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते। तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नॉट स्टूडेंट्स।
1: एन के सिंह जी आप बताइए, फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
11: मैम मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी, 8 बजे के करीब मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो क्रॉड प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे। तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए। फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, गुस्से मारने लगे, देवर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी। 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंखों, आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे उनके पास, कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैं दूर से भी।
1: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे?
11: मैम, ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर। ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
1: प्रदीप जी, ये बताइए कि एक और चीज, क्योंकि जब 20 तारीख को हमने देखा तो देखिए वहां से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके, तो छात्र कह रहे हैं कि भाई हम भी भड़क गए, हमने रिटेलिएट किया। अब क्या हुआ वो तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, बट 21 और 22 तारीख को तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था, तो हुआ क्या? मतलब क्या, जिसको कहते हैं ना कि कैटलिस्ट क्या था, ट्रिगर क्या था जिससे अचानक से चीजें काबू के बाहर हो गई? मतलब कुछ हुआ क्या, कुछ बोला, कुछ लाठी चार्ज था, आंसू, क्या क्या हुआ, क्या गुस्सा किस बात का था?
4: कोई भी ऐसा जो हमारे ऊपर असॉल्ट हुआ है, जो हमारे साथ हुआ, उसका कोई बैकग्राउंड हो, जिससे आपने कहा कि भाई आप किसी तरह का अल्टरकेशन हो, कोई बहस हो, वो कहीं और स्पेशली जाना चाह रहे हो, वो मार्च, कुछ नहीं था। इट वॉज अ गैदरिंग, और उसके बाद में हमारे ग्रुप को देख के उन लोगों ने जान बूझ के, हम अनसच एंगेज भी हमारे साथ,

0: माहौल बना के कुछ लोग वहां पे ऐसे हैं जो कि ताकि बात जो है बढ़ जाए और वो स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में एक मुद्दा बन जाए, और ऐसे एलिमेंट्स जो है उनको अलग करना, उनको छांटना और उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैम ये जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, आम पब्लिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए बहुत डैमेजिंग। तो मेरा जो उस वक्त का एक्सपीरियंस जो कहता है मैम, कोई ऐसा प्रोवोकेशन की बात ही नहीं थी। एक होता कि वो कुछ चाह रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू जिसपे हम लोग अपना अपने अपने पक्ष को लेके हम लोग अड़े हुए हों या हम उनको कुछ ना करने दे रहा। इट वॉज सिंपल गैदरिंग, 7:30-8 बजे की बात थी। हम लोग भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि कोई वहां से रिजेंटमेंट आएगा। ऑनेस्टली बताऊं आपको, इट वॉज जस्ट सिंपल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, और हम लोग वहां अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे ताकि बाकी चीजें वहां पे कोई इशू ना हो। तो ये कोई ट्रिगर पॉइंट हो या कोई ऐसा इशू हो मैम, ऐसा हमें कोई समझ नहीं आया और मुझे ऐसा कुछ नॉलेज में नहीं है, और ना ही उस दिन ऐसा कुछ था।
1: और एनके सिंह जी, कई बार ऐसा भी होता है क्या, कुछ बच्चे आपके बीच बचाव में भी आए थे? क्योंकि 2-3 वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ बच्चे ही बीच में घुसे हुए हैं, कह रहे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, ये मत करो। फिर क्या हुआ, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश की?
0: मैं बताऊं
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: बताइए
0: कुछ अगर
1: प्रदीप
0: आप कहें कि हमेशा मैम जो है ना, जब भी कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ बच्चे या कुछ लोग आके उसको अलग भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर एडमिट कि वो मना करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो
1: आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ एनके सिंह जी?
2: मैम उस भीड़ में मैम कुछ लड़के बोल रहे थे कि आप आगे चलिए चलिए चलिए, भागिए भागिए, इस तरह से मुझे वो कह रहे थे कि भागिए यहाँ से, कि मार देंगे भागिए। तो मुझे लगा कि फिर शायद वो लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कह सकते मैम, वो उसी का पार्ट है, उन्हीं के लोग हैं। क्योंकि उससे पहले मैम मेरे साथ ना, मैंने जो एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी, वॉलेट जो था मेरा, इसमें मेरा आई कार्ड था और एटीएम कार्ड से, वो वहां से उन्होंने स्नैच कर लिया। तो मुझे नहीं पता मैम किसने किया है, और ये स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है मैम, स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते कि वो चेन स्नैचिंग है, पुलिस के साथ ही वो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं मैम। तो मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन स्टूडेंट जैसा व्यवहार करने वाला कोई है, या स्टूडेंट के नाम पर वहां पर उपद्रव करने के लिए वहां पर किसी को भेजा गया है, लाए गए हैं वो लोग। लगता है मोटिवेटेड है मैम वो लोग, कुछ करना चाहते थे दिल्ली
1: ये
2: में।
1: बताइए, क्योंकि अभी एक एक कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं और हो भी गया है नेचुरली, क्योंकि वायलेंस हुआ है, कि एक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट का माहौल बन गया है। आपने कहा कि आप एनके सिंह जी वहां पर खुद जंतर मंतर पर रहे हैं, बच्चों के साथ आप रहे भी हैं, आपने देखा भी है 2-3 दिन उनको वहां पर जो एक्चुअल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
2: मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, वो अपनी बात रखें जंतर मंतर एरिया में। अगर वो आके बताना चाहते हैं किसी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो वहां पर आके बताएं, बात करें। लेकिन वहां पर जंतर मंतर एरिया के बाहर जो एरिया है, जो कनॉट प्लेस तक जाता है, वहां पर इतनी भीड़ में 5-5, 10-10 हजार लोग, वहां पर चलने की रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। वहां पर वो लोग पता नहीं किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे अंधेरा होता है मैम, वो वहां पर कुछ ना कुछ वारदात करने के लिए हैं, रेडी है बिल्कुल ना। कोई भी वर्दी वाला मिल जाए, उनसे छीना झपटी करना, मारपीट करना, क्योंकि फिर उसके बाद फिर ये होगा कि मॉब ने किया है, मॉब का कोई कोई फेस नहीं होता, शक्ल नहीं होती। दूसरे कुछ इसमें प्रोपेगेंडा कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तो बस ये कलर लगा दिया है, इनको चोट ही नहीं लगी, झूठ बोल रहे हैं, या AI वीडियो होगा जिसमें भाग रहे हैं। तो मैम वो तो उसका तो कुछ होने है नहीं, लेकिन डेफिनेटली
1: वो आप ही का वीडियो है ना, जिसमें आप भाग रहे हैं और आपको अचानक से पकड़ लेती है भीड़, फिर आप छुड़ा के भागते हैं।
2: जी जी मैम, तो मैम मैं हूं, तभी मेरी MLC भी हुई है, इलाज चल रहा है, आप देखेंगे तो मैम यहाँ पर अभी चोटें लगी हुई है, सर में भी काफी स्टिचेज हैं, और पूरी बॉडी में जो है काफी ब्लोज है मैम, हाथ में चोट लगी है अगर देखेंगे आप, दूसरे में भी, मतलब पैरों में भी, मतलब उन्होंने ट्राई तो किया है बिल्कुल कि मार ही दिया जाए वैसे को ना। मतलब ये एक्चुअली मैम मुझे लगता है क्रिमिनल्स हैं वहां पर जो आ गए हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं मुझे लगता है अंदर हैं, जहां जंतर मंतर एरिया है, और जो उसके बाहर घूम रहे हैं सब क्रिमिनल्स हैं मैम। वो
1: आपके बच्चे हैं एनके सिंह जी?
2: जी मैम मेरे बच्चे हैं मैम, छोटे बच्चे हैं।
1: वो जब देखते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने उनका कुछ विचार है? क्योंकि आजकल तो सभी जेंजी बड़ी जागरूक है ना, सब TV देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, कुछ बताते हैं वो आपको ये सब देख करके? उनका क्या सोचना है ये?

0: जंतर मंतर के बाद?
1: मैम पहले तो वो मेरी बेटी है 9th क्लास में, तो वो बहुत जागरूक थी, स्कूल में बात हो रही थी, वो कह रही थी नहीं ये तो सीजेपी वाले हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात रख रहे हैं। लेकिन जब वो मेरी बेटी ने वो इंसिडेंट देखा मेरे साथ, तो मैं घर आया, उतनी सब बुरी हालत थी मेरी, तो मेरी बेटी रोने लगी, तो वो बोलने की मुझे तो इन लोगों से नफरत हो गई, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हुआ मैम।
0: और उस रात को जिस दिन आपके साथ वारदात हुई, उस दिन तो एसीपी जो हैं भगत, एसीपी भगत जी हैं, उनको भी उसी रात पीटा गया था ना?
1: हाँ मैम, वो मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मेरे से पहले ही उनका वारदात वहां हो रखी है उसी रोड पर। पहले उनकी वारदात वहां हो गई थी और उनको काफी चोटें लगी मैम, उनके दांत टूटे हुए थे, ब्लीडिंग हो रही थी नाक से मुंह से, उनको उनको इंटरनल ऑर्गन्स की कुछ इंजरी भी थी, बहुत उनकी हालत खराब थी। तो मैम वो उनकी गाड़ी में ही मुझे फिर लाया गया, उनके साथ में एक एसीपी और थे, उनको भी छोटी चोटे थी, एक दो और स्टाफ था, 4-5 लोग थे उस गाड़ी में। तो जैसे मैं वहां पहुंचा आगे जहां पर मुझे बचाया गया, उसके बाद उसी गाड़ी में मैं हम लोग आरएमएल हॉस्पिटल आके भर्ती हुए मैम।
0: प्रदीप जी आप क्या कहेंगे अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है इस वक्त जंतर मंतर पे बैठा हुआ, वो तो देखेंगे, वो तो बहुत इंस्टा पे ये सारे वीडियोस देखते हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों को आप?
2: हम तो कहेंगे कि आप लोग देश का भविष्य हैं, और वायलेंस या गुस्सा या किसी किस्म की ऐसी जो चीजें हैं वो किसी के हित में नहीं है, और कानून जो है वो सबको मानना चाहिए, और किसी किस्म की इंस्टिगेशन में किसी की बातों में ना आए। यंग उम्र में थोड़ा होता है इन चीज़ों को लेके, कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, बट हर बात का सोल्यूशन सिर्फ बातचीत है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके बीच में गलत लोग हैं, आपको गलत गाइड करते हैं, आपकी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी सही बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे बच के रहें, और अपनी बात को एक जस्टिफाइड तरीके से डेमोक्रेसी में जिस तरह डिग्निफाइड वे में कहा जाता है उस तरह कहा जाए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे तत्वों के बीच में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो। तो वायलेंस किसी बात का हल नहीं है, और इस तरह का बिहेवियर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ करना कतई जस्टिफाइड नहीं है। हम अगर किसी को कुछ भी रोक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट देयर टू डू आवर ड्यूटी, और उसको करना हमारी कंपल्शन है, हमारा एक दायित्व है।
0: एक चीज आपसे और पूछूंगी, क्योंकि कई बच्चे ये भी गुस्सा है, क्योंकि जो वीडियो आते हैं ना कि भाई कोई पुलिस वाला थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है या किसी ने नेम बैच नहीं लगाया, क्या है उसकी सच्चाई? उससे भी तो गुस्सा है इन बच्चों में।
2: लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट करते हुए किसने कब क्या एक्ट किया, किसी भी एक्ट को, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर कोई गलत एक्ट है तो उसको जस्टिफाई करना कहीं से ठीक नहीं है। बट ये गुस्सा होना भी कोई गलत बात नहीं है, कोई मिसकंडक्ट को नोट करना भी गलत बात नहीं है, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाए, अथॉरिटीज को बताया जाए, जो सुधार करने हैं वो कराए जाए। लेकिन वायलेंस या गुस्सा या तोड़फोड़ पब्लिक प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है, देश आपका अपना है, ये नुकसान करने से क्या हल मिलेगा, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर कोई किसी भी किस्म की कोई गलती कोई भी व्यक्ति कर रहा है, कोई भी संस्था का है, चाहे कोई भी है, तो उसके लिए हमारे पास फोरम्स हैं, अथॉरिटीज हैं, आप लोग उसको लीजिए। आप गुस्सा करके वायलेंस करके अपने खिलाफ केस कराएंगे या नुकसान होगा आपका, पर अगर तरीके से ठीक से आप मैटर को टेकअप करेंगे तो आपके पास सुनी जाएगी, बिकॉज गुस्सा या वायलेंस जो है किसी बात का हल नहीं है, मेरा तो ये मानना।
0: बॉटम लाइन तो यही है कि देश का कानून है। जी एनके सिंह जी बताइए।
1: मैम मेरी बेटी है भव्या सिंह, मेरे साथ ही बैठी है, तो वो काफी रो रही थी उस दिन ना, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो
0: हाँ, बताइए ना भव्या, बताओ भव्या क्या कहना चाहोगी आप, फ्रेम में आ जाओ, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाओ भव्या। कौन सी क्लास में हो आप? 9th में?
3: 9th में हूँ।
0: बोलो।
3: मुझे लगता है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उन्हें वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहिए था। एंड आई डोंट थिंक सो, जहाँ पे वो जो लोग थे जिन्होंने मेरे पापा पे हमला करा, मुझे लगता कि वो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत नहीं करेगा अपने, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे, ना कि ऐसे वायलेंस का रास्ता चूज करना चाहते थे, वैसे नहीं करना चाहते थे।
0: That's a very sensible thing. और मैंने सुना है कि you used to support the CJP. that you still, maybe you still support the CJP, right? I mean, who doesn't want to support reforms?
3: I support CJP, those students, things are galat hua. I support Sonam also, but I don't support those people jinhone aisi harkat kari, like jo police pe police ko harm karna chahte the. बहुत लोग हेट करते हैं पुलिस को कि वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन एक्चुअली पुलिस बहुत हेल्प करती है लोगों की, और ये बात बहुत लोगों को नहीं पता.
0: I think what this young lady has said is really the crux of this entire debate that we are having. Look, everyone wants reforms, everyone wants wrongs to be righted. Bhavya in particular. Hum log jo yahan baithe hue hain, in another 10-20 years we'll be history. These are the people who need to take the country forward. Violence is never the way. Everyone pays the price for it. Thank you very much, N.K. Singh ji, aur Bhavya ko bhi, aur Pradeep ji, thank you very much for speaking to us. And hope you get well soon.
2: Thank you.
0: It is so terribly sad, the kind of price that ordinary people, whether they are civilians, whether they're in uniform, have to pay for this violence. And then there is the flip side of the coin. In the July 20 clash during the march to parliament, official figures said that as many as 60 protesters were injured. Now, NDTV has tracked down at least two of those injured who say that they have suffered pellet gun injuries. So were pellet guns used? And if yes, then by who? Because the Delhi police has categorically said that no pellet gun usage has been done by them in all of these days. But the fact is that between these two victims, NDTV's Tanushka Datta has obtained the medico-legal report of a 28-year-old journalist which clearly mentions pellet gun injuries. The word pellet is mentioned at least three times in this MLC. The report says that the victim sustained pellet wounds on his right elbow and back and was brought to Safdarjung Hospital with complaints of pain at injury sites. The case sheet then documents darkened skin around the wounds on his elbow and back with pellet shards stuck to his skin and tenderness on the impact site. All of this quoted verbatim from the report. Now, Rahul Gandhi has asked who will answer for this use of excessive force during a protest. Today, he brought the second victim, 19-year-old Sahil, before the media and demanded that action be taken against anyone who had used pellet guns on civilians. In fact, Tanushka also spoke to the uncle of Sahil before Rahul Gandhi brought him out in public.
4: क्या एक बारी शुरू से हमें समझा सकते हैं कि साहिल जी के साथ हुआ क्या उस दिन, और आंखों की रोशनी के बारे में क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स?
5: 99% उसका विजन जा चुका है इसका, और 1% चांस है बस.
4: 1% चांस है. और उस दिन फिर हुआ क्या था फिर साहिल जी के साथ?
5: उस दिन वो प्रोटेस्ट में जा रखा था बीजेपी, तो उधर वो गया तो मतलब भीड़ पीछे की तरफ जा रही थी, पुलिस वाले लाठी चार्ज वगैरह कर रहे थे, तो साहिल उनको लीडर बन के आगे की तरफ लेकर आया, तो साहिल पे पहले उन्होंने एक लीडर समझ कर लीडर को एज ए टारगेट उसको किया, पहले उसके ऊपर चार स्मोक ग्रेनेड फेंके गए हैं, ठीक है, और फिर उस पे पैलेट गन से उसके शॉट करे हैं, वो पैलेट गन शॉट किया है.
4: कितने पैलेट गन्स के वुंड मार्क्स होंगे, मतलब इंजरीज होंगे साहिल पर?
5: 200 मतलब 200 मार्क हैं उसके शरीर पे.
4: अच्छा, और आंखों में आपने जो बोला जिस आंख की रोशनी जा सकती है, उस आंख में डायरेक्टली पैलेट गन लगा है कि नीचे में लगा है?
5: डायरेक्टली उसकी आंख में पैलेट गन लगा है.
4: और साहिल ने ऐसा कुछ बोला क्या कि जो पुलिस थे वहां पर, क्या पुलिस ने पैलेट गन डायरेक्टली फायर किया साहिल पर?
5: हाँ जी.
4: और अगला एक ऑपरेशन हो गया है, अगला ऑपरेशन आप कब होगा?
5: एक हफ्ते बाद.
4: और साहिल क्या अभी बात कर पा रहे हैं या किस स्थिति में है?
5: वो दर्द में है अभी तो फिलहाल, थोड़ा बहुत उसका दर्द कम हुआ है, मेडिसिन लेके भी दर्द कम हो रहा था, मतलब थोड़ा बहुत बात कर रहा है, बाकी तो ज्यादा टाइम सो ही रहा है.
4: साहिल की उम्र क्या है, वो उस दिन प्रोटेस्ट में क्या मन से गए थे?
5: 19 साल का एज स्टूडेंट है DU का.
4: और उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों ज्वाइन किया?
5: स्टूडेंट तो अपने भविष्य के लिए ज्वाइन किया था, उसने फ्यूचर अच्छा हो.
4: जी.
0: An investigation must yield answers. who used these pellet guns? How did these two people, at least these two people, sustain these injuries? And even as that investigation takes place, the other issue is, how does the government break the deadlock which still continues in Parliament? In the last 12 hours itself, the government has moved on multiple fronts. One, in bringing in a new tougher law to deal with paper leaks. Second is the outreach efforts to the student protesters, and third, an administrative rejig as well. And then, of course, around all of this is the politics that is still playing out in Parliament. First, let's talk about the law. After the Prime Minister's zero tolerance message late last night, the Cabinet cleared a tougher anti-paper leak bill proposing up to 10 years in jail and fines of up to 10 crore rupees for those behind this organized leak racket. Second is about the outreach. The government reached out yet again to Sonam Wangchuk. Late yesterday night, he ended his fast after receiving assurances on discussions taking place in Parliament, compensation for families of student suicide victims, and an assurance that no action would be taken against anyone who had participated in peaceful protests. Soon after that, Sonam Wangchuk said that now there is a need to engage. No one really benefits from a resignation. The need of the hour is to talk about reforms. Subsequently, the government met for the second time with members of the CJP. The CJP, though, after a meeting that lasted for almost an hour, said that we want to continue with our demand for the resignation of Dharmendra Pradhan. That is a non-negotiable. Now we'll have to see what the government's response is when the third round of talks are held tomorrow. And the third action that we spoke of, the administrative reset with changes in the higher education departments and the NTA. But will this three-pronged strategy be enough? How much of a legal deterrence is going to work? And most importantly, what does it take to break the political standoff that we are seeing between the government and the opposition? But before that, let's quickly listen in to the reactions that we got all day.
6: Pradhan Mantri ji ne nirnay liya ki paper leak se sambandhit jo mamle adalaton mein lambit hain, chal rahe hain, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा।
7: व्हाट इज द यूज ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? देयर आर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट देयर आर नो फास्ट ट्रैक जजेस। देयर आर नॉट इनफ जजेस टू फिल द existing courts. They don't appoint the judges and they create a fast track court.
8: About Dr. Pradhan, now of course, I mean, we spoke with them, we told them that this is non-negotiable, it's not about the CJP or Sonamji or any one individual. This movement is about accountability. That is what people have most resonated with. And the entire country, wherever these protests are happening, they have a single point demand that Dharmendra Pradhan has to accept accountability and resign or be fired from the cabinet.
0: And joining us now is Dr. Abhishek Manu Singhvi, fifth term sitting MP, member of the CWC, eminent jurist, and a senior national spokesperson of the Congress. Thank you very much, Dr. Singhvi, for speaking
9: Thank
0: to
9: you.
0: Us. Because this is a issue, I think, that the entire country is looking at very, very keenly. It concerns our children. It concerns their families. Now, with the government saying we are going to bring in a much stricter law, do you think it is going to be enough to stop the paper leaks?
9: No one in his right mind will object to a proposed stricter law and a better framework. Equally, no one in his right mind will think of it as a magic wand. I've always believed India is an over-legislated, under-enforced country. Laws don't lead to violations or diminution in violation. It is the operation and implementation of the laws where we fail. Now, don't forget, Padmaja, that we are now 12 years into this government. The maximum, and I found a lot of whataboutery in several channels since the last few days, talking of pre-2014 paper leaks in other states non-BJP ruled. That is pure whataboutery. For 12 years, the maximum leaks across the country have occurred in a central examination. This NEET is a centralized thing.

0: It's not going to happen.
1: Firstly, I would like to thank Mr. Sonam Wangchuk. I think he did what he could, and we did really, we really respect that. But I think now, you know, if it's on their ego, now it's our ego as well. We have demanded what we have, and till the time they don't give it to us, we are not going to back down. And most importantly, I think they are counting on us that this is going to fizzle out. We just have to wait longer than they can.
0: You know, that's the resilience of the young that you keep talking about, that poets keep talking about. Sir, 1 second. And that, like that lady said, that you want us, you want to see how much patience we have to sit here. Well, we are in for a long haul.
2: And well, in an NDTV exclusive conversation, the CJI, Surya Kant, has clarified the misreporting over Supreme Court allegedly refusing to hear a case of police brutality, alleged police brutality against the protesting students. Now, the CJI said that a matter couldn't be heard on the basis of one-page letter and had asked only for a complete petition to be filed, which took place today, following which the matter is now being taken up. Now, the CJI further said that he will always step in to help all those who face injustice. Listen in to that exclusive conversation of the Chief Justice of India with NDTV.
3: हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत है सर, एक बड़ी विवाद हुआ था जिस पर आपने आज बताया भी, और जो केस है जो पुलिस ब्रुटैलिटी की बात की, जिस पर बार बार मीडिया के एक्सेस भी कह रहा था कि आपने सुने से मना कर दिया कि हमारे पास आज आपने क्लियर भी किया है और सोमवार के लिए लिस्ट भी किया है। तो जी
4: देखिए, मैं सिर्फ इस पर इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैटर ऑफ जुडिशियल साइड पर आएगा तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया।
3: जी जी,
4: सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार न तो कर सकती है न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने बात प्रवासियों को बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24/7 24 घंटे खुले हैं। मेरे पास अगर कोई पिटीशन आएगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा।
3: वो एकदम से मेंशन हुआ, एक कुछ पता भी नहीं था
4: उसको। मैं ये बोलूंगा जिसको विस्तारबाजी बोलते हैं, एक पेज का एक आप लेटर किसी को लिखे और उसको बोले कि इसी पे मेरा एविडेंस सुन लीजिए, इसी पे मेरी सुनवाई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है।
3: जी जी,
4: मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो रूल बने किसी पिटीशन को फाइल करने के, उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता। तो मैंने यही मैसेज भेजना चाहा कि आप कोई पिटीशन फाइल कीजिए तो हमसे कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं, आज सुबह 10 बजे तक मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे यहाँ पे कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, तब मैंने वो कोर्ट में मुझे मजबूरी बोलना पड़ा।
3: जी जी,
4: मैं आज कुछ पिटीशन फाइल हुई है उनका मेरे सामने मेंशन हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। जो कानून अपनी जगह है, जो भी उसमें प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे, और मैंने
3: तो आम लोगों को और खासतौर पर छात्रों को जिस तरह से यहाँ पर कहा गया उनको इनकी ऐसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं?
4: मैं देश के हर नागरिक को और विशेष रूप से युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ कोई भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून की मर्यादाओं में रहकर के उनकी समस्या को, उनके दुख दर्द में उनको जरूर हम उसका कोई निदान करेंगे। उसके लिए जो कानून में संभव है वो हम उसको रिलीफ को प्रदान करेंगे।
3: इसी मामले में पॉलिटिकल इशू है, उस पर तो शायद आप नहीं कुछ बात।
4: नहीं, मैं पॉलिटिकल इशू
2: We're moving across to some breaking news that's coming in. The Prime Minister has issued a new statement, and this is his message to the youth. The Prime Minister has released a video statement where he has gone ahead and thanked the youth for the overwhelming response that they have given. On the video that the Prime Minister shared late at night, let's hear that out. The statement from the Prime Minister just coming in.
5: Thank you, friends. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
2: So that was the Prime Minister's response, saying that he is extremely grateful and that he expresses his gratitude for the video response that the youth have given to him. Remember this, he is talking about the late night video that the Prime Minister had posted.

0: thank Mr. Sonam Wangchuk. I think he did what he could, and we did really, you know, we really respect that. But I think now, you know, if it's on their ego, now it's our ego as well. We have demanded what we have, and till the time they don't give it to us, we are not going to back down. And most importantly, I think they are counting on us that this is going to fizzle out. We just have to wait longer than they can.
1: You know, that's the resilience of the young that you keep talking about, that poets keep talking about. Sir, 1 second. And that, like that lady said, that you want us, you want to see how much patience we have to sit here. Well, we are in for a long haul.
2: And well, in an NDTV exclusive conversation, the CJI, Surya Kant, has clarified the misreporting over Supreme Court allegedly refusing to hear a case of police brutality, alleged police brutality against the protesting students. Now, the CJI said that a matter couldn't be heard on the basis of one page letter and had asked only for a complete petition to be filed, which took place today, following which the matter is now being taken up. Now, the CJI further said that he will always step in to help all those who face injustice. Listen in to that exclusive conversation of the Chief Justice of India with NDTV.
3: हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्य कांत है सर, एक बड़ी बात हुआ था जिस पर आपने आज बताया भी, और जो केस है जो पुलिस ब्रूटेलिटी की बात की, जिस पर बार बार मीडिया के एक्सेप्शन कह रहा था कि आपने सुनने से मना कर दिया कि हमारे पास वक्त, आज आपने क्लियर भी किया है और सोमवार के लिए लिस्ट भी किया है। तो जी
4: देखिए, मैं सिर्फ इसमें इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैटर ऑफ जुडिशियल साइड पर आएगा तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये गलत रिपोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुनने से इनकार किया।
3: जी जी,
4: सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी केस को सुनने से इनकार न तो कर सकती है न करेगी। मेरी कमिटमेंट है सारे भारत को, और मैंने बात प्रशासन को बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे 24/7 24 घंटे खुले हैं। मेरे पास अगर कोई पिटीशन आएगी ही नहीं तो मैं सुनूंगा पर
3: रैंडमली वो एकदम से मेंशन हुआ, आपको कुछ पता भी नहीं था।
4: उसको मैं ये बोलूंगा जिसको विस्तारबाजी बोलते हैं, एक पेज का एक आप लेटर किसी को लिखे और उसको बोले कि इसी पे मेरा एविडेंस सुन लीजिए, इसी पे मेरी सुनवाई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हैं किसी पिटीशन को फाइल करने के, उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता। तो मैंने यही मैसेज भेजना चाहा कि आप कोई पिटीशन फाइल कीजिए तो हमसे कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं, आज सुबह 10 बजे तक मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरे यहाँ पर कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है, तब मैंने वो कोर्ट में मुझे मजबूरी बोलना पड़ा। मैं आज कुछ पिटीशन फाइल हुई है उनका मेरे सामने मेंशन हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। जो कानून अपनी जगह है, जो भी उसमें प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे, और मैंने जो लगाया है
3: तो आम लोगों को और खासतौर छात्रों को जिस तरह से यहाँ पर कहा गया उनको इनकी ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप क्या भरोसा दिलाना चाहिए?
4: मैं देश के हर नागरिक को और विशेष रूप से युवा साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ कोई भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो सुप्रीम कोर्ट कानून की मर्यादाओं में रहकर के उनकी समस्या को, उनके दुख दर्द में उनको जरूर हम उसका कोई निदान करेंगे, उसके लिए जो कानून में संभव है वो हम उसको पूरी रूप प्रदान करेंगे।
3: इसी मामले में पॉलिटिकल इशू है, उस पर तो शायद आप नहीं पूछ पाते।
4: नहीं, मैं पॉलिटिकल इशू पर पूछ
2: पाता। We're moving across to some breaking news that's coming in. The Prime Minister has issued a new statement, and this is his message to the youth. The Prime Minister has released a video statement where he has gone ahead and thanked the youth for the overwhelming response that they have given. On the video that the Prime Minister shared late at night, let's hear that out. The statement from the Prime Minister just coming in.
5: Thank you, friends. Kal der raat आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। Thank you, दोस्तों।
2: Right, so So that was the Prime Minister's response, saying that he is extremely grateful and that he expresses his gratitude for the video response that the youth have given to him. Remember, this he is talking about the late night video that the Prime Minister had posted yesterday at about nearly 12 midnight, where he had assured the youth of the country that they will be given justice, that all those people who